0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टॉयज आपके रोमांस कोशेंट को बढ़ाने के लिए. आपका बॉयफ्रेंड ले आया आपके लिए बाबी डॉल्स खेलने के लिए. नाउ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू योर बॉयफ्रेंड व्हाट काइंड ऑफ टॉयज यू मेंट.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता है वो मैं हूँ. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. लेट्स टॉक अबाउट योर जिंदगी का रोमांस एंड इट्स फेलियर्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड ऑब्वियो. टाइम हो गया है फॉर द सीक्रेट बॉक्स. और आज जो मेरे साथ हैं वो मिस्ट्री कॉलर नहीं है. ही वॉन्ट्स टू गो विद हिज नेम. उनका नाम है दीपक.
4: दीपक बोल रहा हूँ मैम.
2: कैसे हो आप?
4: मैं बढ़िया, आप कैसी हैं?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ. आपकी रिंगटोन तो बड़ी सही है, भीगी भीगी रातों में एंड ऑल दैट. कैसा लगता है? अब आप ऐसे मुझसे बात करोगे? एक बात बताओ, आपने मुझे अभी जो इनक्रेडिबल मैसेज लिखकर भेजा इंस्टाग्राम पर, आप मुझे अच्छे से बताओ कि क्या सिचुएशन क्या है?
4: सिचुएशन एक्चुअली ये है कि ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं. जब आप जो है एक फिजिकली इंटीमेट होते हो, जब आप रोमांस करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आप जो है ना थोड़ा अजीब अजीब, मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अजीब अजीब से हरकतें होती हैं. मतलब कोई लोग आवाज करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो ऐसी जो है ना, मतलब एक अनोइंग जैसा फीलिंग आता है जब आप जो है ना कुछ मतलब अजीब टाइप का, क्योंकि माइंड जो है एकदम से अलग ही और चला जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में जो है मैंने ऐसी मतलब एक दिन ऐसे ही बोल दिया मैंने कि भाई क्या फील कर रहे हो, किसको फील कर रहे हो, ऐसे बोल दिया मैंने.
2: एक सेकंड. तो आप अपने पार्टनर के साथ थे इन बेड और फिर आपने ये क्यों पूछा कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो या क्या फील कर रहे हो?
4: नहीं तो वो अलग ही, मतलब कुछ अलग ही टाइप का हो रहा था. मुझे लगा कि ना मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ याद ही जैसा नहीं है. मतलब ना एक होता है ना कि आदमी, मतलब जैसे कभी आदमी ड्रिंक करता है ना, ड्रिंक करने के बाद एकदम से वो नहीं होता कि नशे में जैसा होता है, तो वैसा वाला माहौल था. तो मैंने ऐसी जस्ट चेक कर रहा था, मतलब कि भाई क्या है बोलकर. तो
2: मतलब मुझे क्या अच्छा लग रहा है या फिर मतलब व्हाट इज इट दैट्स मेकिंग यू फील लाइक दिस कि मैं बार बार यही करता रहूं, है ना?
4: हाँ करेक्ट. हाँ. वही मतलब उनको अच्छा लग रहा था वही. हाँ. करना. हाँ. तो मैंने वैसे पूछ लिया कि मैंने कहा कि क्या इमेजिन क्या फील क्या कर रहे हो, मतलब. हाँ. क्या सोच रहे हो, मतलब. हाँ. तो उन्होंने ये मतलब बोल दिया, वो जो भी सोच रहे थे, उनका कोई क्लासमेट होगा कभी कोई बचपन का, तो मतलब छोटे कक्षा, तो नाम ले लिया ऐसे छोटे या बड़े जो भी रहा होगा. हाँ. तो मुझे पहले तो बहुत बड़ा एनवाइन सा लगा. मैंने कहा है तो ये क्या है, मतलब
2: नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां या लड़के इमेजिन नहीं करते हैं विद देयर पार्टनर्स, भी किसी और को इमेजिन कर रहे होते हैं, बट ऐसे किसी का नाम लेना कि यार लाइक सुशील फ्रॉम 8A, ऐसा तो थोड़ा.
4: हाँ वही वही ना. हाँ. पहली बार मुझे ऐसे लगा. हाँ. बाद में फिर जब सारी चीजें होगी, सब नॉर्मल हो गया, तो ऐसे पूछा मैंने. मैंने कहा क्या कुछ याद है कि क्या कैसे कह रहा? तो बोली यार पता नहीं क्या मेरे को अचानक से याद आ गया, मतलब ऐसे ही हो. तो मैंने, तुमने बोला तो मैंने बोल दिया, अभी बात होगी. अरे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. तो ये मतलब ये क्या कि कुछ टाइम तक फिर ना ऐसी, मतलब वो हंसी ठिठोली में चलते गया, मतलब. तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, मतलब कि अभी सामने वाले को अगर लग रहा है तो मैं लग रहा है कि कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल उसको फील हो रहा है, अनकंफर्ट फील हो रहा है या कहीं पर भी, तो इस तरीके से जो है ना माहौल जो है पुराना ही लाने की कोशिश हो जाती है, मतलब. हाँ, हाँ. ये था.
2: हाँ. तो फिर आपने मुझे ये भी बोला था कि फिर आपने उसे कहा कि तुम जिस जिस को भी इमेजिन करती हो तुम उसका नाम बताओ.
4: हाँ करेक्ट ऐसा बोला मैंने. तो हाँ. नहीं उनका कुछ रहा नहीं ऐसा ज्यादा, मतलब. हाँ. मैं बोला ज्यादा नहीं बोला कुछ भी. हाँ. तो वही रहा कि कभी एक आध जो है जो उनका कोई हो सकता है ना, सडनली आ गया हो कोई दिमाग में. हाँ.
2: और तो फिर बोल दिया. पर आपने लिखा था कि आप भी उसे एंजॉय करने लग गए थे फिर.
4: नहीं हाँ तो मैंने अभी मैं बोलता ना, वो दूसरी वही तो बात बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ना फिर उसको हमने ऐसे मैं ले लिया कि कभी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अनकम्फर्ट उनको फील होता है, देन फिर वही सिचुएशन पे चले जाते हैं हम लोग. चल यार फील कर, किसी को इमेजिन कर ले वाली बात,
2: किसी को भी इमेजिन कर ले. एग्जैक्टली मतलब सो लॉन्ग एज तुम रियल लाइफ में नहीं कर रहे हो.
4: हाँ करेक्ट.
2: रियल लाइफ तुम ब्रैड पिट को इमेजिन कर रहे हो तो क्या ही जाता है, टैक्स हो
4: जाता है. ट्रस्ट वाला एक रिलेशन है ना, तो वो वाली बात है बस.
2: बट ब्रो मतलब आई हैव टू हैंड इट टू यू, अगर मैं ऐसे किसी के साथ होती और मुझे कोई बंदा कहता कि मैं नौरा फतेही को इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसी चपाट मारती ना, बिना वीजा के सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता वो. और आप ऐसे कह रहे हो हम एंजॉय कर रहे हैं, लाइक वाह यार. आपको वैसे मैं रोशिफाई करना चाहूंगी, क्या आप चाहोगे रोशिफाइड होना?
4: हाँ कोई दिक्कत
2: नहीं है, चलो.
0: You've been roshified.
2: अच्छा मेरा एक सवाल का जवाब दे दो. मैं आपको जब रोशिफाई करी थी आप किसे इमेजिन कर रहे थे?
4: मैंने तो किसी को सोचा ही नहीं.
2: ओले नॉटी बॉय, आप तो कुछ सोचते नहीं हो, सारा नॉटी काम तो आपकी गर्लफ्रेंड करती है. बट व्हिचएवर वे इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू.
4: ओके
2: थैंक यू, टेक केयर, बाय. और अगर ऐसे ही आप एक बहुत ही ब्रेव इंसान हो कि यू आर लाइक मैं अपना नाम बताऊंगा, ठीक है, मुझे मिस्ट्री कॉलर बनना ही नहीं है, मुझे मत बनो यार, आपको जो सही लगता है वो ही. बट व्हेन आई रोशिफाई यू, आई वांट यू टू थिंक ऑफ मी, ओके, एंड टू बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट यू हैव टू सेंड मी योर कन्फेशन ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची, रोशी नाम का स्पेलिंग है ROCHIE. नाउ आई नो आई एम कॉल्ड मिर्ची. सो फनी. अच्छा और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मुझको। मैं करता तुझे मैं डरता नहीं, किसी के पाप से मैं ज्यादा बात करता नहीं, तू रहे राम से आले के मैं लड़ता नहीं, लेकिन दिमाग खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे, पंगा ना लूं मेरे साथ, काफी हो गई बक बक, बाकी बातें पीने बाद शुभ हुए बादशाह।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: या, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं आपके लिए सिर्फ मेकअप नहीं लाना चाहती हूँ, मैं साथ में एक स्किन केयर फ्रिज भी लाना चाहती हूँ, बट बैग में फिट नहीं होगा, इतना छोटा भी नहीं है ना. एंड आई वाज लाइक, एक सेकंड सिस्टर, वन सेकंड, कैन यू रिवाइंड दिस कॉन्वर्सेशन. मेकअप तक समझ में आ गया था, लेकिन स्किन केयर का फ्रिज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज माई कजिन इन लंडन, ओके, शी कॉल्ड मी. वो अभी आ रही है मुझे विजिट करने के लिए नेक्स्ट मंथ, एंड शी इज लाइक, आपको नहीं पता है दीदी कि जो अब छोटे स्किन केयर फ्रिज आते हैं, वो छोटा सा फ्रिज होता है, आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हो और उसमें आप सिर्फ अपना मेकअप का सामान रखते हो, सो दैट आपका मेकअप खराब नहीं होता है, एंड यू डोंट मिक्स इट अप विद द फूड इन द फ्रिज जो आपके घर में होता है. तो आपके मेकअप में फ्रिज में रखे हुए खाने की स्मेल नहीं आती है. एंड आई वॉज लाइक, यू नो व्हाट सिस्टर, तू एक काम कर, मेरी तरफ से एक फ्रिज रख ले अपने लिए, दो दो फ्रिज अपने कमरे में रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा फ्रिज भी और मेकअप भी. दिस ऑल साउंड्स सो वॉन्की. अगर आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी में दिक्कतें हैं, तो अगर आपके पास एक स्किन केयर के लिए स्पेशल फ्रिज नहीं है जो आप अपने बेडरूम या बाथरूम में रख सकते हो, आपने क्या सच में दिक्कतें देखी हैं? और अगर मेरी तरह आपको लग रहा है दिस इज क्रेजी, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, मेकअप तक तो ठीक था, मेकअप के लिए एक स्पेशल फ्रिज, ये कौन सी दुनिया है बे, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल कंपेयर नोट्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. आई डू नॉट हैव अ स्किन केयर रेफ्रिजरेटर, आई एम सो सॉरी. एंड व्हाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
3: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगवा ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो.

0: हेलो
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
0: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
0: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
0: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
0: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
0: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल
0: से कम मुझे
1: बिल्कुल
0: मालूम
1: से, होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं, जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
0: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
0: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
0: चल
1: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
0: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
0: हेलो
1: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
0: आपको आपके से फोन मत करिए, मैं तुम्हारा इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर
1: दिया। क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा, आई वुड गो विद जहर है. कई लोग ना आपकी जिंदगी में प्यार बन के आते हैं बट दे टर्न टॉक्सिक एंड बिकम वेरी जहरीला. आई थिंक दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन विद धनश्री, बट आई विल सून फाइंड आउट अगर आपकी भी जिंदगी में द चुम्मा इज टर्निंग आउट टू बी जहर. बेबी हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है धनश्री. हाय धनश्री.
3: हेलो. प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब बहुत बिजी रहते हैं, ऐसे बात वगैरह नहीं होती हमारी ज्यादा. लेकिन कोई भी अगर बिजी है, अगर बीच में प्यार है तो वक्त तो निकाल ही लेते हैं ना.
2: तो आपके ये उनके कहाँ रहते हैं?
3: यही रहते हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है. फिर भी वो ऑनलाइन दिखते हैं कंटिन्यू, FB पे रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं. तो फिर मतलब मुझे एक मैसेज करने के लिए मतलब इतना भी टाइम नहीं है.
2: बराक ओबामा, हु इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी भी शादी हुई थी, दो बच्चे हैं. एज अ फादर वो टाइम निकालते ही होंगे ना अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए, करेक्ट?
3: नहीं है प्यार, ये मुझे भी समझ में आता है. लेकिन वो टाइम पास ही है, वो सीरियस नहीं है, दिल समझता ही नहीं है ये. मतलब कितना भी कोशिश करो वो याद ही आते हैं. और
2: एक्चुअली यू नो व्हाट धनश्री, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तब हमारा दिल नहीं समझता है कि सामने वाला इंसान शायद हमें इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उसे हमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि हम उससे इतना प्यार करते हैं, करेक्ट? बट अगर आपने उसे अल्टीमेटम नहीं दिया कि अगर आप मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, अभी जितना आपका दिल टूट रहा है ना उससे 10 गुना ज्यादा दिल टूटेगा.
3: वो एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है फिर तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो. मैंने अभी ब्रेकअप का भी बोला, ओके आता है रिप्लाई.
2: मतलब जो इंसान इतनी ओपनली तेको बोल रहा है कि तेको जाना है तो तू जा, तू अपना टाइम क्यों वेस्ट करी है इस बंदे के साथ यार, बेब पागल है तू.
3: मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे सब समझ में आता है कि मैं कर दूंगी स्टॉप, लेकिन हो ही नहीं रहा है
2: और होगा भी नहीं. ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें सामने वाला हमें मोहब्बत नहीं करता, हमें नजर आता है लेकिन हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते. 90% ऑफ द पीपल इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप से नहीं जा सकते. आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अडिक्टेड हैं.
3: 3 महीने बात नहीं हुई हमारी कंटिन्यू, जैसे मैंने भी खुद ट्राई नहीं किया, मुझे याद आई लेकिन फिर भी मैंने ट्राई नहीं किया. सिर्फ मैंने मेरे कजन था एक भाई, उसके साथ DP रखी थी, तो DP का स्क्रीनशॉट निकाल के उसने मुझे उस दिन मैसेज भेजा कि ये कौन है, नहीं कुछ लेना देना है. तो फिर ऐसे जैसे मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ जैसे लड़का उन
2: यार,
3: देखो उसके बारे में क्यों?
2: क्योंकि उसके पास एक खड़ा वर्शिपर है. अगर आपकी कोई पूजा करे दिन रात आप उसे जाने दोगे? नहीं ना.
3: नहीं
2: तो फिर वो भी तो वही कर रहा है. 3 महीने उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप जी रहे हो या मर गए, लेकिन जैसे ही उसने एक और बंदे की फोटो देखी, he was like, यार ये तो मेरे उससे like, कंट्रोल से निकल गई है, आई हैव टू गेट हर बैक. अच्छा इसको 21 डेज के लिए ब्लॉक कर दो, मेरे लिए
3: ब्लॉक कर दो.
2: ब्लॉक 21 डेज. आज जो भी तारीख है इसके 21 दिन बाद, एक्चुअली 25 दिन के बाद हम फिर से बात करेंगे. ऑल द बेस्ट टू यू, यू कैन डू इट, आई हैव फेथ इन यू स्वीट हार्ट, गो फॉर इट. ठीक है?
3: हाँ,
2: डोंट लेट मी डाउन. ओके, यू नो व्हाट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना कितना मुश्किल है. नॉट बिकॉज मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है. एक नहीं, 2 टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को सर्वाइव किया मैंने. सो इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और काम है आपसे मोहब्बत करना. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कवि की कल्पना पर थोड़ा गौर फरमाएं। बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आई दिल मेरा ले लो, बहन जी आपका दिल है या एक दर्जन अंडे, कि मेरा दिल ये रहा आप ले क्यों नहीं लेते, इसका स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लीजिए। लाइक रोमांटिसिज्म इस हद तक गिर चुकी है इन आई डोंट नो दिस सेंचुरी मैन। लाइक आप ये सोचो कि मैं किसी बंदे को प्रपोज करना चाहती हूँ और इसी कवि की कल्पना को इंस्पिरेशन रखते हुए मैं क्या कहूँगी। रोशी मैं रोशी, खत्म करो खामोशी, दिल देने आई योर मैं स्वीटी पाई। अगर मैंने किसी लड़के को ये गाना गा के सुनाया और उसने मुझे प्यार दिखाया, आई विल थिंक दैट ही इज डैमेज्ड इन द हेड। और अगर आपको लगता है दैट दिस इज अ वेरी कूल क्वर्की वे ऑफ शोइंग लव, मैं जेन्युइनली 100% डिस्गस्टेड होकर भी आपसे बात करना चाहती हूँ इसके बारे में। एंड व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB फॉर दैट। मेरा नाम है रोशी मैं रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग स्पेशल।

नारी को क्यों सता रहा है, जिस घर में नारी ना उठते उस घर में दानव है रहते। पुरुषों में सर्वोत्तम वो है मर्यादा पुरुषोत्तम जो है। बहनों से राखी है, माँ से है छाया, बीवी से है घर और बेटी से माया। इनसे

0: Roshi. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वेकेशन पे जाना है, श्योर थिंग, बीच, हाँ हाँ, गोवा जा सकते हैं, गोकर्णा जा सकते हैं, पापा से पूछ के बताता हूँ कब जा सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, हर चीज अपने पापा से पूछ के करेगा तू? ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की एक स्पेशल पेक्यूलियर प्रॉब्लम थी। मतलब ममाज बॉयज तो देखे थे, बट ये डैडीज बॉय ना स्पेशल केस था। हर चीज में अपने पापा से पूछता था, क्या मैं डेट पे जा सकता हूँ, पापा से पूछूंगा, तुझे क्या लेकर दूँ तेरे बर्थडे के लिए, पापा से पूछूंगा, छुट्टी पर जाना है, पापा से पूछूंगा। एक पॉइंट पर ना आई स्वेयर आई थॉट आई शुड स्टॉप डेटिंग हिम एंड स्टार्ट डेटिंग हिज पापा, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप मेरा बॉयफ्रेंड कम और उसके पापा ज्यादा चला रहे थे। आप एक बात बताओ, ममाज बॉय को तो हम सब ने डेट किया, बट मेरी तरह कभी किसी पापाज बॉय को डेट किया है? इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, इफ यू नो, और अगर आप ऐसा कर चुके हो, मेरी सिंपथीज लेने के लिए अपना नंबर भेजें इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nayi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात करो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी।
2: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टॉयज आपके रोमांस कोशेंट को बढ़ाने के लिए. आपका बॉयफ्रेंड ले आया आपके लिए बाबी डॉल्स खेलने के लिए. नाउ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू योर बॉयफ्रेंड व्हाट काइंड ऑफ टॉयज यू मेंट.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता है वो मैं हूँ. हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफ बी. लेट्स टॉक अबाउट योर जिंदगी का रोमांस एंड इट्स फेलियर्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है आर ओ सी एच आई ई. एंड ऑब्वियो टाइम हो गया है फॉर द सीक्रेट बॉक्स. और आज जो मेरे साथ हैं वो मिस्ट्री कॉलर नहीं है. ही वॉन्ट्स टू गो विद हिज नेम. उनका नाम है दीपक.
4: दीपक बोल रहा हूँ मैम.
2: कैसे हो आप?
4: मैं बढ़िया, आप कैसी हैं?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ. आपकी रिंगटोन तो बड़ी सही है. भीगी भीगी रातों में एंड ऑल दैट. कैसा लगता है? अब आप ऐसे मुझसे बात करोगे?
4: अच्छा,
2: एक बात बताओ. आपने मुझे अभी जो इनक्रेडिबल मैसेज लिखकर भेजा इंस्टाग्राम पर, आप मुझे अच्छे से बताओ कि क्या सिचुएशन क्या है.
4: सिचुएशन एक्चुअली ये है कि ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं. जब आप जो है एक फिजिकली इंटीमेट होते हो, जब आप रोमांस करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आप जो है ना थोड़ा अजीब अजीब, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अजीब अजीब से हरकतें होती हैं. मतलब कोई लोग आवाज करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो ऐसी जो है ना, मतलब एक अनोइंग जैसा फीलिंग आता है जब आप जो है ना कुछ मतलब अजीब टाइप का, क्योंकि माइंड जो है एकदम से अलग ही और चला जाता है ना. तो ऐसी सिचुएशन में जो है मैंने ऐसी मतलब एक दिन ऐसी ही बोल दिया मैंने कि भाई क्या फील कर रहे हो, किसको फील कर रहे हो, ऐसे बोल दिया मैंने.
2: एक सेकंड. तो आप अपने पार्टनर के साथ थे इन बेड और फिर आपने ये क्यों पूछा कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो या क्या फील कर रहे हो?
4: नहीं तो वो अलग ही मतलब कुछ अलग ही टाइप का हो रहा था. मुझे लगा कि ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ याद ही जैसा नहीं है. मतलब ना एक होता है ना कि आदमी मतलब जैसे कभी आदमी ड्रिंक करता है ना, ड्रिंक करने के बाद एकदम से वो नहीं होता कि नशे में जैसा होता है, तो वैसा वाला माहौल था. तो मैंने ऐसी जस्ट चेक कर रहा था मतलब कि भाई क्या है बोलकर.
2: तो मतलब मुझे क्या अच्छा लग रहा है या फिर मतलब व्हाट इज इट दैट्स मेकिंग यू फील लाइक दिस कि मैं बार बार यही करता रहूं, है ना?
4: हाँ करेक्ट. वही मतलब उनको अच्छा लग रहा था वही करना. तो मैंने वैसे पूछ लिया कि मैंने कहा कि क्या इमेजिन क्या फील क्या कर रहे हो, मतलब क्या सोच रहे हो. मतलब तो उन्होंने ये मतलब बोल दिया, वो जो भी सोच रहे थे, उनका कोई क्लासमेट होगा कभी कोई बचपन का, तो मतलब छोटे कक्षा तो नाम ले लिया ऐसे छोटे या बड़े जो भी रहा होगा. तो मुझे पहले तो बहुत बड़ा एनोइंग सा लगा. मैंने कहा है तो ये क्या है मतलब.
2: नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां या लड़के इमेजिन नहीं करते हैं विद देयर पार्टनर्स, भी किसी और को इमेजिन कर रहे होते हैं, बट ऐसे किसी का नाम लेना कि यार लाइक सुशील फ्रॉम 8A ऐसा तो थोड़ा.
4: हाँ वही ना. पहली बार मुझे ऐसे लगा. बाद में फिर जब सारी चीजें होगी सब नॉर्मल हो गया तो ऐसे पूछा मैंने कहा क्या कुछ याद है कि क्या कैसे क्या रहा. तो बोली यार पता नहीं क्या मेरे को अचानक से याद आ गया, मतलब ऐसी हो. तो मैंने तुमने बोला तो मैंने बोल दिया अभी बात होगी तो. अरे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. तो ये मतलब ये क्या कि कुछ टाइम तक फिर ना ऐसी मतलब वो हंसी ठिठोली में चलते गया मतलब. तो बहुत बार ऐसा हो जाता है मतलब कि अभी सामने वाले को अगर लग रहा है तो मैं लग रहा है कि कहीं थोड़ा अनकम्फर्टेबल उसको फील हो रहा है, अनकम्फर्ट फील हो रहा है या कहीं पर भी, तो इस तरीके से जो है ना माहौल जो है पुराना ही लाने की कोशिश हो जाती है. ये था.
2: तो फिर आपने मुझे ये भी बोला था कि फिर आपने उसे कहा कि तुम जिस जिसको भी इमेजिन करती हो तुम उसका नाम बताओ.
4: हाँ करेक्ट ऐसा बोला मैंने. तो नहीं उनका कुछ रहा नहीं ऐसा ज्यादा, मतलब बोला ज्यादा नहीं बोला कुछ भी. तो वही रहा कि कभी एक आध जो है जो उनका कोई हो सकता है ना सडनली आ गया हो कोई दिमाग में.
2: और फिर पर आपने लिखा था कि आप भी उसे एंजॉय करने लग गए थे फिर.
4: नहीं हाँ तो मैंने अभी मैं बोलता ना वो दूसरी वही तो बात बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ना फिर उसको हमने ऐसे मैं ले लिया कि कभी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अनकम्फर्ट उनको फील होता है, देन फिर वही सिचुएशन पे चले जाते हैं हम लोग. चल यार फील कर, किसी को इमेजिन कर ले वाली बात,
2: किसी को भी इमेजिन कर ले. एग्जैक्टली मतलब सो लॉन्ग एज तुम रियल लाइफ में नहीं कर रहे हो.
4: हाँ करेक्ट. रियल लाइफ
2: तुम ब्रैड पिट को इमेजिन कर रहे हो तो क्या ही जाता है, टैक्स
4: करेक्ट ना. ये ट्रस्ट वाला एक रिलेशन है ना, तो वो वाली बात है बस.
2: बट ब्रो मतलब आई हैव टू हैंड इट टू यू, अगर मैं ऐसे किसी के साथ होती और मुझे कोई बंदा कहता कि मैं नौरा फतेही को इमेजिन कर रहा हूँ ऐसी चपाट मारती ना, बिना वीजा के सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता वो. और आप ऐसे कह रहे हो हम एंजॉय कर रहे हैं, लाइक वाह यार. आपको वैसे मैं रोशिफाई करना चाहूंगी, क्या आप चाहोगे रोशिफाइड होना?
4: हाँ कोई दिक्कत
2: नहीं है. चलो
0: You've been roshified.
2: अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दो. मैं आपको जब रोशिफाई करी थी, आप किसे इमेजिन कर रहे थे?
4: मैंने तो किसी को सोचा ही नहीं.
2: ओले नॉटी बॉय, आप तो कुछ सोचते नहीं हो, सारा नॉटी काम तो आपकी गर्लफ्रेंड करती है. बट व्हिचएवर वे, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू.
4: ओके,
2: थैंक यू, टेक केयर, बाय. और अगर ऐसे ही आप एक बहुत ही ब्रेव इंसान हो कि यू आर लाइक, मैं अपना नाम बताऊंगा, ठीक है, मुझे मिस्ट्री कॉलर बनना ही नहीं है, मुझे मत बनो यार, आपको जो सही लगता है वो ही. बट व्हेन आई रोशिफाई यू, आई वांट यू टू थिंक ऑफ मी, ओके? एंड टू बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट, यू हैव टू सेंड मी योर कन्फेशन ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची, रोशी नाम का स्पेलिंग है ROCHIE. नाउ आई नो आई एम कॉल्ड मिर्ची. सो फनी. अच्छा, और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कई बार हम रिलेशनशिप्स में इतने परेशान रहते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं कि कुछ टूट तो नहीं जाएगा, बिखर तो नहीं जाएगा. मे बी बिकॉज वी कम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स जहाँ पर थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर अस. और इसीलिए ना मैंने अपने बाथरूम के शीशे के सामने एक पोस्टिट पर चिपका कर रखा है ताकि मैं रोज़ इसे पढ़ूँ और याद रखूँ, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर. क्योंकि चिंता और चिता में कुछ खास फर्क नहीं होता. चिंता हमें अक्सर अपनी चिता तक ही ले जाती है. एंड I understand that it's easier said than done. जब हम overthinking के cycle में होते हैं तो सोचते रहते हैं and that's I think when things like meditation या green color या blue color का इस्तेमाल करके to relax your mind या बहुत ही peaceful calming music सुनना, these are the things that will make sure कि हम anxiety spiral में घुस के खुद का पीस ऑफ माइंड तबाह ना कर दें. और अगर आपको ये सब करने में मदद की ज़रूरत है, लेट मी जस्ट टेल यू, आई हैव हैड अ हेड स्टार्ट बिकॉज आई यूज्ड टू बी एन ओवरथिंकर एंड अ क्रॉनिक एंग्शियस पर्सन. और अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हो देन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. और यही जिंदगी की जद्दोजहद ने मुझे सिखाया है कि जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा
4: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छा म्यूजिक एवरग्रीन होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरा साया फिल्म का ये गाना, आशा भोंसले की आवाज, मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। ये मूवी आई थी 1966 में और इस गाने का जो रिवैम्प्ड वर्जन है और झुमका वाला जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आया था वो 2023 में आया था। क्या होते हैं 60 ईयर्स, मतलब एक गाना आप सोचिए 60s में रिलीज हुआ, उस टाइम के जो लोग थे उनकी पसंद बना, फिर अक्रॉस द इयर्स एंड डेकेड्स वो गाना लोगों को पसंद आता गया, इतना पॉपुलर। दिस इज द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय मदन मोहन जी, द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, जो ज्यादातर फेमस हैं अपनी मेलोडीज के लिए, अपनी गजल्स के लिए। तो सुन लेते हैं, रिटन बाय राजेंद्र कृष्ण, संग बाय लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अदालत। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
2: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
2: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
2: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम मुझे
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
2: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
2: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा
2: हूँ, नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
2: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
2: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: तो आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

कमाल ही करते हैं कोहली साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन कोहली जी की। जी जैसे जैसे मास्टरपीसेस गाने इन्होंने बनाए हैं, यकीन नहीं होता कि इन्होंने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। ऐसे बचपन में बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीखा, लेकिन जिस तरह के तगड़े इनके गाने हैं वैसी तगड़ी इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। बंदा बॉर्न टैलेंट था भाई। उसके बाद इतना म्यूजिक सुना, कॉन्सर्ट शोज पता नहीं क्या क्या अटेंड किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, 2 साल SD बर्मन साहब को असिस्ट भी किया। 1950 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म आंखें का म्यूजिक दिया, उसके बाद कुछ और म्यूजिक भी दिया लेकिन वो इतना हिट नहीं हुआ। मदन मोहन जी का पहला सुपरहिट गाना जिसे हम कह सकते हैं वो ये जो हम अभी सुनने वाले हैं। ये गाना ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इतना क्यूट प्यारा गाना है ये। 1956 की फिल्म भाई भाई, गाना लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, गाया है गीता दत्त ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हकीकत फिल्म का ये गाना कंपोज्ड बाय द मैजिशियन कॉल्ड मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और काफी इंटरव्यूज में काफी इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में शेयर की थी उनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर जी ने। तो लता मंगेशकर जी की आवाज में ही सुनते हैं कि ये भाई बहन की जोड़ी कैसे बनी, फिर इस जोड़ी का गाना भी सुनेंगे राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: 36 बरस बड़ा ही लंबा अरसा होता है और जब तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, उस जमाने की यादें ताजा होती हैं, तो एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मेरा नाम थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अभी बहुत सी मंजिलें तय करना हैं। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मैं खुश थी कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे याद किया। मैं खुशी खुशी फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंची। पता चला एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, शहीद। उसी का एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। न मैंने कभी उन्हें देखा था न गाना सुना था। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। ये जानकर हंसी आ गई, मालिक के बेटे का संगीत से क्या संबंध। भाई और बहन का गीत था, बोल थे पिंजरे में बुलबुल बोले मेरा छोटा सा दिल डोले। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा। ये थी मदन मोहन से मेरी पहली मुलाकात। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज राखी का दिन है, लो मुझे राखी बांधो। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे। और मैंने भी यही कोशिश की कि बहन का नाता पूरी तरह निभाती।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा रे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: Milci.
1: Escavana, puscavana, sacavana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन

मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हंसी, बस एक तुम ही रखती हो धन लुटने का।

0: आई हो।
1: किशोर कुमार की आवाज में गाना कंपोज्ड बाय मदन मोहन, बहुत ही रेयर कॉम्बो है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई इन दोनों दिग्गजों ने क्योंकि बहुत ज्यादा गानों में साथ में काम नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बहुत ही यंग एज से, क्योंकि किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार और मदन मोहन के फादर राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली जी, ये दोनों बॉम्बे टॉकीज और फिर फिल्मिस्तान के लिए काम करते थे। तो ये दोनों लड़के अक्सर स्टूडियो में या कैंटीन में मिला करते थे और बातें करते थे कि साथ में काम करेंगे। एंड क्योंकि मदन मोहन जी अपने गानों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते थे कि ये ही आवाज चाहिए, ये ही सिंगर चाहिए, तो जहां जहां जिन गानों में उनको लगा कि किशोर कुमार से उनको गवाना चाहिए, उन्होंने उनके साथ कोलैब किया। तो इसी सुपर्ब कोलैब का एक और गाना सुन लेते हैं, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है, किशोर कुमार थे इस फिल्म में, उन्होंने ही गाया है। फिल्म का नाम है मन मौजी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: मन्ना डे की आवाज में ये गाना, देख कबीरा रोया फिल्म का मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैंने ना मदन मोहन जी की डॉटर संगीता गुप्ता के एक ब्लॉग में पढ़ा था कि मदन मोहन ने मन्ना डे को कन्विंस करने के लिए कि वो ये गाना गाएं, उनके लिए भिंडी मटन बनाया था। मतलब बकायदा उनको घर पे बुलाया कि मैं आपके लिए कुक करूंगा और आपको अपनी एक ट्यून सुनाऊंगा। भिंडी मटन का जादू चल गया, मन्ना डे ने गाना गा दिया। और सुनिए एक बार इस मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर की मुंह बोली सिस्टर यानी कि लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में इनके बारे में एक और क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया था।
1: ये मेरी आंखों देखी बात है कि कभी कभी मदन भैया बस 10 मिनट में तर्ज बना देते थे, और तर्ज भी कैसी, वाह

जब दिल से बात निकलेगी तब असर करेगी। एक दिन मजरू साहब का गीत रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तर्स तो थी ही अच्छी, कविता बहुत ही सुंदर थी। रिकॉर्डिंग के बाद मदन भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि फौरन पहुँचे स्टूडियो में शाबाशी देने शायर को। आप जानते हैं किस तरह शाबाशी दी? बेचारे मजरू साहब के पेट पर हल्के हल्के दर्जनों मुक्के बरसा दिए। मजरू साहब ठहरे शायर, और वो भी सुल्तानपुर यूपी के। मरहबा का ये तरीका उनके लिए यकीनन एक नया तजुर्बा था। पता नहीं पुरदर्द था या पुरकैश। मदन भैया बोले, घर चलिए, मैं आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाऊंगा। रस चाहे स्वर का हो चाहे रसोई का, वो दोनों में माहिर थे।

0: वाओ, हकीकत फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे, भूपिंदर की आवाज में, इन चार दिग्गजों को साथ में गवाना, ये काम तो मदन मोहन जी ही कर सकते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मदन मोहन जी अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ये बात शेयर हुई थी उनके बेटों संजीव कोहली और समीर कोहली के साथ एक कॉन्वर्सेशन में। सुनिए,
1: ये किस्सा एक है कि जहाँ आरा फिल्म, जिसके गाने बहुत लोगों को पसंद थे, उस फिल्म के दौरान 1964 में रिलीज हुई, तो गाने 62-63 में रिकॉर्ड हो रहे थे, और वो इस बात पे अड़ गए कि मैं तलत महमूद से गवाऊंगा। और तलत महमूद साहब ने कुछ सालों तक गाया नहीं था बीच में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी और दौर बदल रहा था। शायद डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये गाने सिर्फ रफी गाएंगे, रफी साहब का नाम इतना हो गया था। लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, रफी से मैं दो गाने जरूर गवाऊंगा, लेकिन ये तीन सोलोज जो है ये मैं सिर्फ तलत से गवाऊंगा। और बहुत झगड़ा हुआ और मदन जी ने कहा या तो मैं फिल्म छोड़ देता हूँ या फिर मैं ये गाने अपने पैसों से रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो ये गाने फिर मेरे हो गए। और वो गाने रिकॉर्ड हुए और वही तलत साहब की आवाज में रहे। और इनकी जिद थी कि मुझे मालूम है मेरे गाने के लिए क्या आवाज ज्यादा सूट करेगी। रफी साहब ने भी गाया उस फिल्म में, लेकिन तलत साहब के गाने ज्यादा चले।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ इंडियन सिनेमा मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 21 साल की उम्र से इन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाने की शुरुआत की, लेकिन एक कहते हैं ना सक्सेस या रिकग्निशन या उनका पहला सुपरहिट गीत वो उनको मिला जब वो 32 साल के थे। मदन मोहन कोहली जी की अपनी स्ट्रगल है बावजूद इसके कि वो प्रिविलेज्ड थे। कैसे? ऐसे कि इनके फादर श्री राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली जी ये बॉम्बे टॉकीज या जो बाद में फिल्मिस्तान बन गया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों से जुड़े। बल्कि पिताजी तो चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं, और वो आर्मी में गए, 2 साल सर्व भी करके आए, लेकिन म्यूजिक से दूर नहीं रह पाए। और मदन मोहन जी जब फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, तब इनके फादर ने सभी लोगों को मना कर रखा था कि भाई इसको काम मत देना, ऊनो रिवर्स होता है, यहाँ पे नेपोटिज्म रिवर्स हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि इश्क मुश्क और अच्छा टैलेंट छुपाए नहीं छुपते हैं। बंदा इतना टैलेंटेड था कि उसको काम मिलता गया और हिंदी फिल्मों को एक से एक बढ़कर गाने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga.
0: Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Pranichi with Charu, only on

0: मदन मोहन जी ने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनके काम को ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट 1970 की फिल्म दस्तक के म्यूजिक के लिए जब उनको नेशनल अवार्ड मिला तो इस खबर पे उनको यकीन ही नहीं हुआ। सुनिए एक बार लता मंगेशकर जी ने उनके बारे में क्या शेयर किया था।
1: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला, और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।
0: वैसे इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना मदन मोहन ने भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। थोड़ी साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, बट इट इज वर्थ लिसनिंग टू इट। सुनिए।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: जितने सुरीले मदन मोहन जी के गाने उतना ही कड़क उनका गुस्सा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और गुस्सा इसीलिए क्योंकि इतने पैशनेट थे वो म्यूजिक को लेकर। एक गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब क्या हुआ था, उनके जो बेटे हैं संजीव कोहली और समीर कोहली, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंसिडेंट शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था नैनो में बदला छाए, फिल्म मेरा साया का, वो रिकॉर्ड हो रहा था। बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, शिव कुमार शर्मा जी संतूर पे थे, रईस खान सितार पे थे, लेकिन कोई रिदम वाले गलती बार बार कर रहे थे। उस वक्त क्या था कि रिकॉर्डिंग एक साथ होती थी, ये 60s की बात है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो सिंगर और म्यूजिशियंस को साथ में परफॉर्म करना पड़ता था। तो अगर म्यूजिशियन गलती करे वो गाना उसी वक्त रोक दिया जाता था, फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये चलता रहा और करीब 12-13 टेक ऐसे कोशिश हुई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना भी था और बहुत क्लासिकल गाना है, भीम पलासी पर आधारित। तो वो गाना कट होता गया और ये इतने चिड़े मदन जी कि उन्होंने जाके अपने हाथ से स्टूडियो का जो शीशा होता है कंट्रोल रूम और सिंगर की बूथ के बीच, इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो शीशा टूट गया, उनका हाथ में मतलब खून बहने लग गया। जल्दी से पट्टी बांधी और कहा, लोगों ने कहा इस हॉस्पिटल ले चले, कहा बिल्कुल नहीं, जब तक ये गाना या अभी रिकॉर्ड नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और अगला टेक परफेक्ट हुआ। ये किस्सा लता जी सुनाती हैं और वो कहती हैं मैं इतनी थक गई थी गा गा के, लेकिन हम इतना डर गए और घबरा गए मदन जी को देख के, फिर शायद जो गाना हमने फाइनली रिकॉर्ड किया वो इसी वजह से इतना अच्छा हुआ।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या हुआ जब यश चोपड़ा ने फोन किया जावेद अख्तर को वीर ज़ारा फिल्म के गाने लिखने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये शेयर किया था जावेद अख्तर साहब ने एक टेलीविजन शो पर, सुनिए।
1: तो उन्होंने मुझे बताया इस पिक्चर के बारे में, वीर ज़ारा, उसमें आपसे मैं गाने लिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे गाने हैं और आप ही करेंगे। तो मैंने कहा इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो कहले मदन मोहन जी। तो मैंने समझाया शायद मजाक कर रहे हैं, मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं? कहले भाई उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने करेंगे।
0: कितनी फैसिनेटिंग बात है ये। और आपको पता है तेरे लिए हम हैं जिए वीर ज़ारा का जो गाना है, ये ट्यून ओरिजिनली जिस गाने के लिए बनी थी वो मदन मोहन साहब ने ऐसे रिकॉर्ड करके भी देखी थी। थोड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है तो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर सुनिए जरा।

दिल ढूंढता है, मौसम फिल्म का गाना। ये फिल्म जिस साल रिलीज हुई 1975 में, उसी साल मदन मोहन जी भी नहीं रहे, बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
1: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
1: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
1: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
1: बिल्कुल,
2: से,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
1: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
1: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
1: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
1: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
1: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
1: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hello, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na, hamari na iski baiye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा मैं।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी टीम अच्छा परफॉर्म करती है पर आप नहीं कर पाते। ऐसे वक्त में एक टीम लीडर और टीम को क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, हम सब बहुत खुश हुए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरे दिमाग में एक सवाल था, और अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं शायद कोच से और सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन उनसे भी ये पूछता कि कई बार क्या होता है कि जब पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही होती है, हम सक्सेसफुल हो गए, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लेकिन एकाद ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने उतना अच्छा टूर्नामेंट में नहीं किया। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वर्ल्ड के नंबर वन T20 बोलर थे वो, लेकिन वर्ल्ड कप इतना खराब रहा उनका कि बहुत लोगों ने बोला इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अब अगर मैं वरुण चक्रवर्ती हूँ और मेरी टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, मी इंक्लूडेड, बट आई नो पर्सनली मैंने अच्छा नहीं किया, कई बार ऐसा होता है, मैं अपने आप को क्या बोलूं, मैं कैसे अपने आप को इंस्पायर करूं?
4: See, whenever it is a team game, तो वो खुशी तो होनी चाहिए, क्योंकि आप यही चाहते थे कि आपकी टीम जीते। बट सेकंड लेवल, इफ यू हैवंट परफॉर्म्ड पर्सनली वेरी वेल, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें डिसहार्टन होने के जगह इंट्रोवर्ट होकर के रियलाइज जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति होती है महसूसता की शक्ति, तो आप बैठे अपने साथ अंतर्मुखी होकर के आप महसूस करें क्या क्या था। Was it lack of physical preparation? Was it lack of mental preparation? क्योंकि कई बार physical preparation बहुत अच्छी होती है। World Cup में pressure बहुत होता है, expectations बहुत होती है, millions of लोगों की आपसे expectation है, वो pressure कई बार हम face नहीं कर पाते। हमें अंदर में इस प्रकार से होता है, will I be able to perform, अच्छा किया नहीं अच्छा किया, drop तो नहीं कर देंगे, क्या सोचेंगे, there is so much negativity in my mind, तो मैंने physically बहुत अच्छा prepare किया होता है और साल भर किया होता है, पर mentally अपने को इतना strong नहीं बनाया होता, mentally tough नहीं होते, तो वो pressure को face नहीं कर पाते। तो जहाँ पर भी loophole है, जहाँ पर भी कमी लगती है, उस चीज़ को हमें भरना चाहिए। And last thing, for the people, ये बहुत इजी होता है कहना इसको ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप कर दो। आई रियली फील कि हम एज अ कंट्री हर एक को एंकरेज करना, उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कहना कि भले इस बार इन्होंने इतना अच्छा नहीं प्ले किया पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इनको एक चांस और देना चाहिए। एक हर एक के प्रति अच्छा सोचना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको ऊपर उठाना, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। कम से कम इतना ही अंदर में लक्ष्य रख लें कि न किसी के बारे में गलत सोचना है, न गलत बोलना है, न क्रिटिसाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, उनको एंकरेज करना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर टीम लीडर टैलेंट पर भरोसा करे लेकिन बाकी लोग ना करें, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम जीत गए, इंडिया इज वर्ल्ड चैंपियन नाउ। मेरे दिमाग में जो सवाल आया कि कई बार ऑफिसेज में होते हैं, आपकी टीम होती है और उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग एक बंदा होता है, और वरुण चक्रवर्ती भी वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले T20 इंटरनेशनल्स के नंबर वन बॉलर दुनिया में थे, राइट? तो आपकी टीम में लेट्स से एक ऐसा बंदा है जो शायद आपके बॉसेस को नहीं पसंद है, वो कहते नहीं यार ये बेकार, मैं बता रहा हूँ, डोंट बेट दिस ऑन दिस गाय, आपको बहुत विश्वास है उस पे, और फिर ऐसा वर्ल्ड कप टाइप कुछ आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है कुछ जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करते, आपको बहुत विश्वास है, आप उनके बॉस हैं, लीडर हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि मैंने तुमको पहले कहा था तुम गलत इंसान पे बैट कर रहे हो, हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस जहां आप टैलेंट से बहुत कन्विंस्ड हैं लेकिन आप पे पूरा प्रेशर रहता है, प्रोजेक्ट तो हम जीत गए लेकिन भाई साहब अब हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे।
4: मैंने जब हम किसी के ऊपर फेथ रखते हैं, हमारा फेथ भी उनके लिए एक जिम्मेवारी बनता है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। और आप जब फेथ रख रहे हैं तो कोई तो टैलेंट है उनके अंदर, कोई तो स्किल है, एज अ कोच, एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, किसी के ऊपर फेथ रखना मैंने उनको प्योर पॉजिटिव एनर्जी देना, उनके ऊपर विश्वास करना, उनके बेस्ट को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए, ये नहीं करना चाहिए कि हमारा फेथ उनसे कम हो जाए, लेकिन उनके साथ बैठ करके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या चीजें थी जिसके कारण वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे आप कह रहे हैं कि सुपीरियर्स का प्रेशर आता है, तो फिर जब हम कोई चीज के लिए अपने को किसी चीज में डालते हैं और हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आई मीन दैट डजंट मीन दैट यू लूज फेथ इन योर प्लेयर, दैट जस्ट मीन्स कि ठीक है कुछ नहीं हुआ तो उस समय पर जो नेगेटिविटी है आप उसको इम्पैक्ट तो नहीं अपने ऊपर करने देते, पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो अपनी जगह पर राइट है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता, आइए समझते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आई रिमेम्बर अब्दुल कलाम जी कई बार सुनाते हैं कि जो उनके सुपीरियर थे तो कहा जिस समय पर कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, कुछ लॉन्च कर रहे थे, बहुत तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ प्लान कर चुके थे, और जब लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, वो नहीं सफल हुआ। कहा उस दिन जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया।
4: वो खुद गए
3: और उन्होंने खुद सब सवालों का आंसर किया, और बाद में मुझे आकर कहा आई स्टिल हैव फेथ इन यू। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर दैट पर्सन, जिसने अपना 100% दिया है, अपना समय शक्ति श्वास लगाया है, उसका लीडर तो उसके साथ खड़ा है। दो साल फिर उन्होंने मेहनत करी, दो साल के बाद फिर वो लॉन्चिंग हुई, उस दिन सफल हो गए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो पीछे चले गए, और उन्होंने कलाम जी को आगे कहा आज आप सारे क्वेश्चंस आंसर करो। लीडर में ह्यूमिलिटी होती है, जब उसका जो सबॉर्डिनेट है या उसका जो प्लेयर है जब वो हारता है तो वो एक दीवार की तरह, सपोर्ट की तरह उसके साथ खड़ा रहता है, और जब वो जीतता है तो उसकी जीत में वो खुश होता है। दैट इज योर रोल। आप अगर उसके ऊपर से फेथ ही खत्म कर देंगे तो वो ग्रो कैसे करेगा। बाकी हर समय हर कोई सफल हो ये तो जरूरी नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जीतने के बाद भी कुछ लोग वो पहचान और फेम नहीं कमा पाते, आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, हाल ही में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, मेरे दिमाग में एक बहुत अजीब सा सवाल खेल रहा था कि टीम स्पोर्ट कहते हैं इसको, जीती तो पूरी टीम जीती, कप तो पूरी टीम ने उठाई, लेकिन कुछ लोग है ना वो ओवरनाइट हीरोज बन जाएंगे, रातों रात हीरो बन जाएंगे, उनके फॉर्च्यून चेंज हो जाएंगे, उन्हें बहुत सारे एंडोर्समेंट डील्स मिलेंगे, आगे भी लोग उनको याद रखेंगे, और कुछ जो होते हैं उनको लोग भूल जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ये किसी भी टीम विन का देख लीजिए, 1983 वर्ल्ड कप में 2-3 लोगों को सब याद रखते हैं, 2011 वर्ल्ड कप में 2-3 लोगों को लोग याद रखते हैं। हर इंसान की किस्मत नहीं बदलती, लेकिन एफर्ट उन्होंने भी उतना दिया। ऐसा क्यों होता है कि सेम गेम सेम एफर्ट बट डिफरेंट आउटकम एंड डिफरेंट फॉर्च्यून्स?
5: क्योंकि इसमें व्हेन वी लुक एट द कर्मा, जब हम कर्मा की बात करते हैं तो कई बार हम जो एफर्ट देखते हैं वो एक बर्थ का देखते हैं। ये चीज बहुत समझने की है, और इसीलिए हम कई बार थोड़े से डिमोटिवेट या डिसहार्टन भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि दोनों ने अगर सेम एफर्ट किया तो दोनों की सफलता भी सेम होनी चाहिए। लेकिन हम कई बार इसको डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा जो एनालॉजी है कि जब भी आप अपने नए साल का वो अकाउंट शुरू करते हैं ना एक बिजनेस में भी, तो पहली लाइन क्या होती है?
4: कैरी फॉरवर्ड।
5: तो अगर मेरे और आपके बिजनेस का इस साल का जो प्रॉफिट था वो सेम था, लेकिन तो भी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड दोनों का अलग था। ऐसे ही हर व्यक्ति इज अ सोल ऑन अ जर्नी, कुछ तो उनका कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड भी है। तो इस जीवन में, इस बर्थ में अगर हम दोनों इक्वल मेहनत करेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि सफलता, नाम, मान, शान, धन संपत्ति सब कुछ सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। बट इट इज नॉट अबाउट कम्पीटिंग विद यू, ये मेरी यात्रा है, ये मेरी जर्नी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मैं कल जो था आज उससे बेटर हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अपने को उससे कंपेयर करना कि उसको इतने एंडोर्समेंट मिल गई, और अपने को कंपेयर करना कि मैंने कभी सोचा भी था कि मैं इंडिया के लिए भी खेलूंगा। मेरा सपना क्या था कि एक बार मुझे इंडिया के लिए खेलना है, वो सपना पूरा हो गया। उस ग्रेटिट्यूड के जगह हम कितनी जल्दी कॉम्पिटिशन कंपेरिजन में चले जाते हैं, जो मिला है उसका सुख खत्म, और जो नहीं मिला है उसका कंप्लेन, ब्लेम और दुख में हम चले जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ये मेरी रेस है, मेरे साथ मेरा कंपटीशन है। इफ आई एम लिटिल बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे, आई हैव अचीव्ड, इट्स गुड। एंड देन एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट कैरी फॉरवर्ड, डिफरेंट कार्मिक अकाउंट, इसलिए दोनों की सफलता कभी भी सेम नहीं हो सकती।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Sanju Samson सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि गिव अप ना करने की एक इंस्पायरिंग कहानी है। आइए उनसे कुछ सीखते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारी कहानियां आने लगी, संघर्ष की कहानियां, सक्सेस की कहानियां, और एक बहुत कमाल की कहानी है वो संजू सैमसन के पापा की आई कि भाई कैसे उन्होंने जब रियलाइज किया कि दिल्ली में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, संजू सैमसन को, उन्होंने अपना वो दिल्ली पुलिस की जो नौकरी थी वो छोड़ी और फिर केरला रिलोकेट हुए, और वहां पे उन्होंने अपने बेटे के लिए काफी कुछ किया, और वहां से लेके आज जो संजू सैमसन है वो आपके सामने है। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पारियां खेली और हमारे जीतने का एक बहुत बड़ा कारण बने। मेरा सवाल उसमें यह था कि कई बार ऐसे जो चैलेंजेस हैं, ऐसी जो सिचुएशंस है, वो हम सबकी जिंदगी में आती है, तो आज क्योंकि ये सक्सेसफुल स्टोरी है, हम उनके रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, परसिवियरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सक्सेसफुल स्टोरी नहीं होती है तो उस सिचुएशन में अपने आप को क्या बोलूं मैं?
4: सक्सेस से ज्यादा जरूरी होती है जर्नी।
3: जी,
4: जिस समय आपके सामने जो सीन है, आपके पास जो चॉइसेस होते हैं, आप ट्राई तो करते जाते हैं ना कि आपको रिग्रेट तो नहीं हो, ये सोच करके कि सफल होंगे कि नहीं होंगे, उनको भी थोड़ी ना पता था।
3: हाँ, नहीं पता था, लेकिन
4: ये तो आज हो गया, और आज सब कहते हैं बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट है। हर कोई जो लकी और फॉर्चुनेट होता है उसके पीछे कितनी प्रिपरेशन होती है,
3: मेहनत होती
4: पर
3: है।
4: वो निकल करके उस दिन आती है जिस दिन वो सफल हो जाते हैं।
3: हाँ।
4: जर्नी तो कितनी लंबी है, उसमें कितने सैक्रिफाइसेस होंगे, कितने फेलियर्स होंगे, कितनी हार्डशिप्स होंगी, कितने सेटबैक्स होंगे, आज वो सबको ग्लोरीफाई किया जाता है।
3: जी,
4: लेकिन अगर सब जैसे आप कह रहे हैं, अगर कोई सफल नहीं हो, लेकिन उसको ये रिग्रेट तो नहीं रहता कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो हर पेरेंट अपने लेवल पर अपने बच्चे के लिए ट्राई करता है, उसके अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके पास चॉइसेस हैं, उसको ग्रास्प करना, उसमें बेस्ट परफॉर्म करते जाना, आगे बढ़ते जाना, जर्नी है। हर पड़ाव को एंजॉय करते जाएं, फिर वो कहां लेकर के जाएगा वो तो किसी को भी नहीं पता होता।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल नेपाल से आया है। लिखते हैं कि शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन अगर कोई ऐसे परिवार या परिवेश में जन्मा हो जहां शिव बाबा का ज्ञान ही ना हो, लोग एथिस्ट हो या भगवान में विश्वास ना करें, तो उसे ना याद करने में उनकी गलती है क्या?
3: शिव बाबा को याद करना माना शिव बाबा इस परमात्मा
2: जी,
3: परमात्मा के लिए हम कह रहे हैं।
2: हाँ।
3: हम जब परमात्मा को याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको याद करने से अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं
2: जी।
3: अगर मैं परमात्मा को याद करता हूँ, सुप्रीम पावर है ना, तो सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर के हम अपनी जो इनर पावर है
2: वो बढ़ाते हैं,
3: चाहे वो सहन करने की शक्ति है, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, कोई निर्णय लेने की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, छोटी छोटी बातों को लेट को करने की शक्ति। हमें जीवन में बहुत शक्तियां लगती हैं, जैसे फिजिकल पावर है ऐसे ये इनर पावर है। जो याद कर रहा है उसकी शक्ति बढ़ रही है।
2: हाँ।
3: जो याद नहीं कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसको शक्ति की अभी जरूरत महसूस नहीं होती। जब जरूरत महसूस होगी तो शायद वो भी
2: कर लेगा।
3: जैसे कई बार मुझे जिम जाने की जरूरत महसूस नहीं होती, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत महसूस नहीं होती।
2: लेकिन एक दिन रिपोर्ट आता है कि भाई आपका बीपी सब गड़बड़ है, तो डॉक्टर बोलते जाइए।
3: इसीलिए लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि बॉडी है तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए।
2: हाँ।
3: और सोल है तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। बॉडी है तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए, और सोल है तो सुप्रीम सोल को याद करना ही चाहिए।
2: तो उनको जब जरूरत होगी वो अपने आप भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे, आप टेंशन ना लें।
3: हाँ, मे बी एट दिस मोमेंट अगर उनको नहीं जरूरत है तो गलती कुछ नहीं है।
2: हाँ।
3: पर अगर

0: हलचल में भी कितने अचल और डोल हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने काम हैं। और कई बार वो चीज भी किसी को इंस्पायर कर जाती है कि नहीं, आई शुड ऑल्सो अडॉप्ट इट इन माई लाइफ व्हेन दे फील द नीड।
1: और ये भी जरूरी है कि भाई अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो।
0: हमें तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
1: कभी कभी होता ना कि मैं कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहे।
0: परेशान नहीं होना होता, कंसर्न होता है कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये किसी हायर पावर से नहीं जुड़ते और अचानक कोई बात आ गई तो वो उसका सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेजोरिटी लोग, जैसे आपने कहा कि जब बीमारी आती है फिर लगता है अच्छा वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, तो वो जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। तो कई कंसर्न लोग होते हैं कि भाई दुख से पहले ही समझ जाए, दुख आएगा फिर याद करेंगे, फिर उस चीज के पीछे जाएंगे। पहले अपने को इतना एम्पावर्ड कर लें, शक्तिशाली बना लें कि अगर किसी दिन बात आई भी तो उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक मे बी शुभ भावना है, कंसर्न होता है कई बार। एक पेरेंट के लिए भी क्या होता है, एक फैमिली के लिए अच्छे संस्कार हो, शक्तिशाली बच्चा हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, ये उनकी एक भावना होती है। जैसे होता है इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, ऐसे स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: गुड़िया पटना से लिखती हैं सिस्टर कि मैं मेरे बेटे को स्कूल जाने और पढ़ाई में मन लगाने के लिए कैसे समझाऊं। दिन भर कमरे में मोबाइल पर गेम्स खेलता है और रील्स देखता रहता है। मैं रोज उसके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती हूँ, उसे जगाती हूँ, लेकिन जब वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे लेकिन वो गेमिंग में करियर बनाना चाहता है। उसे पढ़ाई के लिए कैसे समझाऊं या खुद को कैसे संभालूं?
5: अगर करियर तक की बात है तो ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा है और अगर उसके पास ये स्किल है, अभी वो देखना पड़ेगा कि ये एडिक्शन है
4: या स्किल
5: कि ये एक स्किल है, क्योंकि गेमिंग में भी जो जा रहे हैं उनके पास स्किल तो है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्योंकि पेरेंट्स हैं, शुभावना होती है, तो वो जब हमारी हॉबीज को देखते हैं तो हमारे कल्चर में कई बार लगता है इसका कोई करियर थोड़ी ना बन सकता है, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, स्पोर्ट होगा। बट अगर उस बच्चे के अंदर स्किल है और वो बच्चा उसके अंदर करियर बनाना चाहता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फियर लगता है तो बच्चे के साथ बात करके कहना चाहिए कि जैसे क्रिकेट के लिए हम कई बार बात करते हैं, कई पेरेंट्स हमें मिलने आते हैं, हर साल 11 लाख 12 लाख बच्चे होते हैं पर सिलेक्ट कितने होते हैं उसके अंदर से?
4: बहुत कम,
5: बहुत कम। 11 की टीम में से भी कितने तो रिपीटेड प्लेयर्स होते हैं, तो जो एक्चुअली में खेलते हैं वो बहुत कम होते हैं इंडिया के लिए। तो उनका जो फियर है और उनका जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन होता है। तो उसमें एक पेरेंट को कहना कि एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप दिन के 2 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ना ही है, आपको डिग्री लेनी है, लेकिन बाकी 6 घंटे अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं सो वी विल सपोर्ट यू। बट वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी करियर में आपको लगता है कि थोड़ा सा अनसर्टन है तो फिर एक ऑप्शन मतलब सपोर्ट भी करे, वो मेहनत भी करे, पर दूसरा ऑप्शन ओपन भी होना चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर प्रभात ज्योति ने एक सवाल लिखा है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें।
3: एक सवाल हमारे पास कई लोगों का आता है, पर इट्स अ गुड थिंग कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनको गुस्सा आता है और नहीं करना चाहिए। तो गुस्से को कम करने के लिए तो गुस्से के रूट पर जाना पड़ेगा कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एक अपेक्षा होती है कि सामने वाला मेरे अनुसार करे। एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं।
2: अच्छा।
3: और फिर वो हर्ट धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। और मुझे ये लगता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
2: हाँ।
3: ये तो बहुत जायज सी बात है ना।
2: सही बात।
3: समय पर आना, सफाई रखना, टाइम पर खाना खाना, पढ़ाई पढ़ लेना, मतलब ये तो करना ही होता है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। और हम इसको धीरे धीरे धीरे धीरे जस्टिफाई करते जाते हैं, फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं मैंने गुस्सा किया नहीं, मुझे गुस्सा
2: आ गया
3: आ गया। और फिर हम कहते हैं उसने काम ही ऐसा किया,
2: उसने दिलवाया।
3: विच मीन्स अब वो क्या बन गया, वो संस्कार बन गया, पैटर्न बन गया, आपको पता भी नहीं चल रहा कि कब आ रहा है। नाउ बार बार आपको अपने को रिमाइंड करना पड़ेगा सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। ये बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, तो भी वो व्यक्ति अलग है। और वो अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार बिहेव करेगा। वो बिहेव जो कर रहा है उस चीज का मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़े और मैं ही डिस्टर्ब हो जाऊं, ये मेरे मन की कमजोरी है। तो मुझे अपने को पावरफुल बनाना है और ये पावर किसी को नहीं देनी कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। एंड देन आई कंटिन्यू टू टेल देम, 100 बार भी बोले, बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना है 100 बार भी बोले। कई मदर्स कहती हैं पहले हम बहुत बोलते थे ना,
2: हमने बोलना ही बंद कर दिया।
3: हाँ।
2: तो वो नहीं करें
3: तो दोनों गलत है,
2: क्योंकि वो भी आप मन में गुस्सा है,
3: मन में गुस्सा किनारा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभा रहे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मतलब है आप किसी के बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और आप कम्प्लीट स्टेबिलिटी के साथ, प्यार के साथ अपनी बात बार बार कह रहे हैं।
2: बहुत बढ़िया। वैसे भी मुझे लगता है कि जब आप गुस्सा करते हैं आप अपने आप को हानि पहुंचाते हैं ज्यादा। गौतम बुद्ध की बहुत प्यारी लाइन है कि यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर।
3: एंगर इज द पनिशमेंट,
2: राइट?
3: एंगर इज द पनिशमेंट। जिस समय आप गुस्सा कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, हर सेल आपका बॉडी का डैमेज हो रहा है। उन दिनों में आप देखें, कोविड के दिनों में सबके पास ऑक्सीमीटर होता था। अभी किसी को गुस्सा आए ना, धीरे से उसके फिंगर पे लगा दें। आपको दिखाई देगा कि सारे जो पैरामीटर्स है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज डैमेजिंग माय बॉडी। और कभी कभी ये करके देखें कि जो कर रहा है और जिस पर कर रहा है, दोनों पर लगा करके देखें और देखना डैमेज ज्यादा किसको है,
2: जो कर रहा है उस पे
3: या जिसके ऊपर हो रहा है। वो तो कई बार यूज्ड टू हो जाता है।
2: यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर।
3: एंगर इज द पनिशमेंट। उसी समय आप उस दुख से, डिस्कम्फर्ट से, अनीस से गुजरेंगे ही, सो आपका ही नुकसान है उसके अंदर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: You know, you're officially an adult jab tumhara biggest morning adventure is finding where you kept your phone last night. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Good morning. This is Mirchi Mornings, jo ki abhi shuru hua hai. Ye wo show hai jo chai se zyada garam hai, coffee se zyada aromatic hai aur breakfast se zyada crispy hai. So, filhaal abhi tum drive kar rahe ho towards your work, ya phir you're stuck in traffic, ya phir catching the train, ya phir pretending you're working from home while making your third cup of chai and aloo ka parontha. I've got you company. यहाँ पर मिलने वाला तुम्हें बॉलीवुड मस्ती, फील गुड स्टोरीज, थोड़ी सी गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार बैंगर्स. सो डोंट यू वरी, आई एम गोइंग टू प्ले सम सॉन्ग्स दैट विल बी योर दिल का प्लेलिस्ट. सो बकल अप, सिप दैट चाय और कॉफी एंड हैव योर ब्रेकफास्ट व्हाइल कीपिंग मी कंपनी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इफ यू एंजॉय माय वॉइस, जाकर मुझे फॉलो भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La pietra la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तेरा कुछ जा रहा
2: है
4: यार, बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और सबसे पहले चलते हैं 1483 पर, जब रिचर्ड द थर्ड ऑफिशियली बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। फास्ट फॉरवर्ड टू 1945, दुनिया ने एक होपफुल चैप्टर शुरू किया विद द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। फिर 1948 में द बर्लिन एयरलिफ्ट बिगन। प्लेन्स कैरिंग फूड एंड सप्लाईज प्रूव्ड दैट कभी कभी सुपर हीरो स्केप नहीं बल्कि कार्गो प्लेन्स चलाते हैं। 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी स्टूड इन वेस्ट बर्लिन विद दिस आइकॉनिक इश बिन आइन बर्लिनर स्पीच। और 1974 में बिलीव इट और नॉट, एक पैकेट ऑफ च्युइंगम बिकेम द फर्स्ट प्रोडक्ट एवर स्कैन्ड विद अ बारकोड। 1977 saw Elvis Presley perform his final concert. और 1997 में पता है क्या हुआ? Every kid and honestly every adult received their Hogwarts acceptance letter in spirit when the very first Harry Potter book hit the shelves. Then 2000 gave us the first working draft of the human genome, and 2015 became another landmark year.

में अभी फिलहाल इस साल और इस मिनट हम सुनने वाले हैं मिर्ची दे आर बैंगर्स इन जस्ट अ वाइल। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के T20 कैप्टन श्रेयस अय्यर के बारे में. ही हैज गॉन अहेड एंड अपडेटेड हिज इंस्टाग्राम बायो. अब तुम पूछोगे इसमें कौन सी नई बात है, यहाँ पर कुछ सुपर क्रिप्टिक हुआ है. ही एडेड सेकेंड DOB 25/12/2025. अब ये है क्या, बर्थडे 2.0, फ्यूचर वर्जन का अपडेट, या फिर टाइम ट्रेवल का सॉफ्ट लॉन्च? Nobody knows. Fans जो हैं वो full Sherlock Holmes mode में जा चुके हैं. Some are saying it could be linked to his recovery journey after a serious injury during the ODI series against Australia last year. While others are like, bro just likes December vibes. Honestly, Instagram bios these days are either motivational quotes or full-time Netflix के cliffhangers. अब इसके बारे में श्रेयस ही बता पाएंगे. आई होप वो जल्दी से इसको डीकोड करके बता दे, वरना फैंस जो है उनकी धड़कनें तो रुकी हुई है. और अगर तुम इसको डीकोड कर पाए हो तो फटाफट से मुझे DM करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का वेदर रिपोर्ट। यहाँ पर अभी फोरकास्ट क्या है मौसम का पता करते हैं। राइट नाउ इट्स अराउंड 68 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज हैंगिंग ओवरहेड, जस्ट लाइक दैट वन अनरेड व्हाट्सएप मैसेज दैट यू आर अवॉइडिंग। इट एक्चुअली फील्स लाइक 69 डिग्रीज फारेनहाइट बिकॉज वेदर इज लाइक आई जस्ट नीड टू एडजस्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट व्हाइल यू बेयर विद मी। एंड नाउ लिसन केयरफुली, रेन इज प्लेइंग प्रीटी शाय टुडे। लास्ट 24 आवर्स में बेयरली 1 मिलीमीटर की ड्रिजल हुई, मानो बरसात ने आकर सिर्फ हेलो बोला है आधा और निकल लिया। नेक्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1 मिलीमीटर की बरसात और एक्सपेक्टेड है। सो आज के दिन अपना अम्ब्रेला कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। और आज का टेम्परेचर रेंज जाएगा फ्रॉम 67 डिग्रीज फारेनहाइट टू 85 डिग्रीज फारेनहाइट, ऑलमोस्ट सेम वाइब्स एज यस्टरडे, सिर्फ आज थोड़ा सा वार्म है। सो आज के दिन आउटफिट एडवाइस इज लेयर के प्लेयर बनो, कंफ्यूज मत रहो, स्टाइलिश रहो, मिर्ची की वाइब अपने साथ कैरी करो, अम्ब्रेला कैरी करो एंड SPF 50++++ वाला सनब्लॉक लगाकर बिल्कुल बाहर जाना, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। एंड मिर्ची पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का टाइम, यानी कि सबसे पहले हार्ट टचिंग स्टोरी। अ 94 ईयर ओल्ड आंध्रा वुमन कोंद्रा गुंटा महालक्ष्मम्मा ने यूएस सिटीजनशिप गिव अप करके फिर से इंडियन बनने की अपील की है। शी लिटरली सेड, मैं इंडिया में ही अपनी लास्ट ब्रेथ लेना चाहती हूँ। नंबर टू पर सीरियस नोट, राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस में 8 लोगों पर चार्जेस लगे हैं फॉर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ डोनेशंस एंड रिप्लेसिंग वैल्यूएबल्स विद फेक्स, लीगल एक्शंस आर ऑनगोइंग। एंड नंबर थ्री पर स्पोर्ट्स से, ऑस्ट्रेलिया हैज रीच्ड द फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकआउट्स आफ्टर अ गोललेस ड्रॉ विद पैराग्वे। Coach says they'll try to do something special in Dallas. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Mujhse connect karna chahte ho to Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Yambala. Burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: से,
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेज रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर
2: दिया क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और आज की स्पॉटलाइट में है इंडिया का राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी, हु इज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड एंड ही इज ऑलरेडी मेकिंग हेडलाइंस. ये लड़का ना वाइट बॉल टूर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड के लिए जर्सी नंबर 3 पहनने वाला है. अब ट्विस्ट ये है कि पहले राजस्थान रॉयल्स में यूजी नंबर 12 पहना करते थे ये, बट दिस टाइम नंबर 3 इज नॉट रैंडम, इट्स एक्चुअली अ मैथमेटिकल डेस्टिनी. अपेरेंटली हिज मॉम suggested to switch because 1 plus 2 is equal to 3. मतलब यहाँ पर selection committee नहीं बल्कि घर की math teacher का full contribution है. And fun fact ये है कि jersey number 3 India में पहले legends ने भी wear किया है, like Harbhajan Singh and Suresh Raina. So pressure भी काफी बना हुआ है वैभव के ऊपर और legacy तो है ही. Honestly, cricket is the only place where your jersey number can have more backstory than your biography. और वैभव की केस में तो एक्चुअली उनकी बायोग्राफी सिर्फ 15 साल पुरानी अभी तक. सो बेसिकली वैभव से अगर पूछा जाएगा तो शायद वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जर्सी का नंबर नहीं चूज किया बल्कि एक लाइफ की इक्वेशन सॉल्व कर दी है, वो भी अपनी मम्मी की हेल्प से. Well, तुम्हारी लाइफ में किसी नंबर का कोई सिग्निफिकेंस है तो मुझसे शेयर करो, डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, जप्पी टू यू एंड पप्पी टू यू. आज का दिन सिर्फ केक और कैलोरीज का नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट शेयरिंग योर स्पेशल डे विद रियली कूल पीपल. एंड यू गॉट द पावर हाउस वोकलिस्ट आरियाना ग्रांडे विद यू सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. बॉलीवुड से भी आज बर्थडे है एक्टर अर्जुन कपूर का. प्रूफ कि अगर तुम्हारी मूवी ब्लॉकबस्टर ना भी हो तब भी तुम्हारा बर्थडे आता है. टीवी कॉमेडी लवर्स से हेलो टू शॉन हेज. एंड ऑफ कोर्स वी गॉट एक्टर म्यूजिशियन जेसन स्क्वाट्समैन. और साथ साथ में इफ यू ग्रू अप वॉचिंग आई कार्ली यू विल नो जेनेट मैकर्डी. इन सबका आज हैप्पी वाला बर्थडे और साथ में तुम्हारा है. तो अगर आज के दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे तो इट्स एन ऑफिशियल रिमाइंडर दैट यू शेयर योर डे विद सम रियली कूल सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियन, ऑथर्स एंड होपफुली समवन हु इज कटिंग यू अ रियली बिग स्लाइस ऑफ केक. और तुम वो केक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अपने बर्थडे शाउट आउट शेयर कर सकते हो, अपने बर्थडे इनवाइट्स मुझे भेज सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम. इफ यू गेट कंफ्यूज कहाँ कांटेक्ट करना है मुझे, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे. 9033 मिर्ची इज माय नंबर. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: with Priscilla. It's hot.
1: Gold lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. $4,150 ke saath, aaj gold ki price kal se about $100 cheaper trade kar rahe hain. Raj Jules ke saath, इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें. वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ. फादर्स डे की सेलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें. आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Welcome to Mirchi Hour का 3 on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Hour का 3.
1: First up, Apple ने अपने products के prices को full on premium mode में भेज दिया है. MacBook Pro, iPad Pro सबको upgrade मिल गया है. But sadly, सैलरीज नहीं बढ़ी है. रिपोर्टेडली सम मॉडल्स इन इंडिया आर टचिंग लैक्स एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट बाइंग अ मैकबुक फील्स लाइक अडॉप्टिंग अ स्मॉल लग्जरी पेट. नंबर टू पर रिपोर्ट से अ सिंगापुर फ्लैग्ड कार्गो शिप वॉज स्ट्रक वाइल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आफ्टर टेंशंस इन द रीजन. ऑफिशियल्स आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली एंड फाइनली सम रिलीफ इन इंडिया. गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज रिस्टोरिंग लेवल्स क्लोजर टू द प्री क्राइसिस टाइम्स. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स कैन फाइनली ब्रीद अ बिट ईजियर बैक होम. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 फॉर दिस आवर. मैं Priscilla तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscaba la buscaba la sacaba la Rambala. Burga, burga. La virpa la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है. अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए. कृपया लाइन होल्ड करें. हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं.
4: हेलो.
2: हेलो.
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी. फोन आया था मेरे पास.
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था.
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ.
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया.
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार. मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अभी अगर आप खाली बैठे.
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है.
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है. कृपया लाइन होल्ड रखें. आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा.
4: हेलो.
2: हेलो.
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार? तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं. अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे. हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में.
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें. अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू. सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार. आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi family. This is Priscilla with you. और आप बारी आ चुके हैं पता करने की कि आज का दिन कैसा जाने वाला है exclusively on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि, अननेसेसरी टेंशन मत लो. योर टैलेंट्स आर योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टुडे. टेक भी आज तुम्हारा दोस्त बन सकता है. लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यार. जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसे फिनिश लाइन तक ले जाना तुम्हारा काम है. मार्स इज गिविंग यू वन लास्ट मोटिवेशनल पुश. कॉफी ऑप्शनल है आज के दिन, लेकिन एक्शन कंपल्सरी है. लकी कलर तुम्हारा है रस्ट ऑरेंज. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, हर चीज कंट्रोल नहीं होती है. जो बदल नहीं सकते हो उसको छोड़ दो. जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करो. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 6. कैंसर यानी कर्क राशि, आज हाफ हार्टेड एफर्ट्स बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं. फुल स्पीड अहेड, फिनिश लाइन तुम्हारा वेट कर रही है और राइवल्स भी, सो बी केयरफुल. लकी कलर इज कोरल रेड. लकी नंबर इज 19. लियो यानी कि सिंह राशि, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को आज बस तुम्हारी एक स्माइल की जरूरत हो सकती है. आज तुम किसी और के सनशाइन बन सकते हो और प्लीज बन जाना. लकी कलर इज गोल्डन येलो. लकी नंबर इज 31. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती है यार. आज थोड़ा सा डिस्टेंस ही बेस्ट मेडिसिन है. पीस भी एक सुपर पावर होती है, जस्ट रियलाइज दैट. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 9. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 1. ये याद रखो कि हॉरोस्कोप जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, तुम्हें फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा सकता. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. थोड़ी सी देर में आती हूँ बाकी बची 6 राशियों को लेकर. तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स एंजॉय करो. वाइब विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. And WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नहीं करने का. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा. प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इससे डरना नहीं है, कभी कभी वही बेस्ट चैप्टर होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, किसी अपने को रियलिटी एक्सेप्ट कराने में आज तुम हेल्प करो. एडवाइस देने से पहले सुनना मत भूलना, लेकिन कभी कभी ears are more powerful than your mouth. Lucky color is forest green. Lucky number is 35. Capricorn यानि मकर राशि, friendship में थोड़ी extra chemistry feel हो सकती है. Love story बने या best friendship रहे, दोनों situation में तुम्हें smile guaranteed मिलने वाली है. Lucky color is midnight blue. Lucky number is 4. Aquarius यानि कुंभ राशि, आज diplomacy is your super power. किसी sensitive person को unnecessarily roast करने का temptation हो सकता है, उसे रेजिस्ट करना क्योंकि शायद तुम किसी को दुख पहुंचा दो. सैवेज बनना लेटर, अभी फिलहाल पीसफुल बने रहो. लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 17. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज यानी कि मीन राशि, वरी को ना आज छुट्टी दे दो, बाहर निकालो घर से, एंजॉय करो अपनी लाइफ, फ्रेंड्स से मिलो, अच्छा खाना खाओ, ऐश करो. यूनिवर्स लिटरली वॉन्ट्स यू टू हैव फन टूडे. लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 30. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट द्वितीय. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इंस्टा और एक्स पर अगर घूमी घूमी कर रहे हो तो मुझे भी जाकर फॉलो कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का बिगेस्ट लाइफ हैक है कि कभी कभी गूगल मैप से पहले हमारे स्टार्स के डायरेक्शन सुन लेने चाहिए। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज राशि जोन का पार्ट टू, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, शॉपिंग का मूड फुल ऑन है, बस वॉलेट को भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना। फन करो लेकिन बजट को गो

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब दो खुशखबरियां देकर यहाँ से निकलने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो ह्यूज वूहू टू आवर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। दे've डिफीटेड होस्ट न्यूजीलैंड 2-0 टू लिफ्ट द FIH वुमेन्स नेशंस कप, their second Nations Cup title, and the victory also earns them promotion back to the prestigious FIH Pro League next season. What a comeback! Unbeaten throughout the tournament, solid defense, brilliant teamwork, aur ek reminder ki Indian women are absolutely smashing it on the world stage. और दूसरी हेडलाइन है, पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रिमूव द 18% सेल्स टैक्स ऑन सैनिटरी पैड्स एंड अदर पीरियड प्रोडक्ट्स आफ्टर अ कैंपेन हाईलाइटेड दैट दीज आर एसेंशियल हेल्थ केयर आइटम्स नॉट लग्जरी प्रोडक्ट्स। इट्स अ मूव दैट मेनी हेल्थ एडवोकेट्स हैव वेलकम्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड मेकिंग मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू वुमेन। देखा, ये दोनों स्टोरीज में से पहली हमें रिमाइंड करती है कि टीम वर्क कैन अचीव एनीथिंग, एंड द अदर रिमाइंड्स अस दैट समटाइम्स मीनिंगफुल चेंजेस स्टार्ट विद पीपल स्पीकिंग अप। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, फॉर वुमेन स्पेशली, इट्स टाइम फॉर मी टू हेड आउट। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर कम्यूट, योर किचन, योर ऑफिस डेस्क या फिर योर लाइफ फॉर अ वाइल। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मिर्ची मॉर्निंग्स का दी एंड होता है यहाँ पर आज के लिए, इस वीक के लिए। मिलूंगी तुम्हें मंडे को, तब तक के लिए तुम खाओ पियो ऐश करो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली

0: कहते हैं आरडी बर्मन छोटे होते जब रोते थे तो पांचवें सुर में रोते थे, सारे गामा पा पा वाला जो सुर होता है उसमें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आरडी बर्मन दी आरडी एक्स ऑफ म्यूजिक, और वो जिस भी सुर में रोते हो, जो असला बारूद उन्होंने म्यूजिक का क्रिएट किया है ना वो फिनोमिनल है। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले सुपरहिट गाने, इस ट्रेंड सेटिंग गाने के बारे में क्या कहा था।
1: ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए, और वन टेक ओके होता है लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा गया, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है, तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया।
0: तो सुन लेते हैं ट्रेंड सेटिंग गाना ऑन आरडी बर्मन स्पेशल पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: हेलो
3: मैडम गुड इवनिंग बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूं और सारे दांत बात कर
2: दूं
3: मेरा अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
2: वही आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना
4: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया
4: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
2: नहीं
4: से सॉरी
2: सॉरी नवीन आई एम सॉरी
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू गो
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची

0: धोक दूं पाए लागू आरडी बर्मन साहब के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाना हैंड्स डाउन उनका वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस है, सत्ते पे सत्ता का ये गाना, जिसमें बहुत सारी आवाजों में खुद आरडी बर्मन की आवाज भी थी। एज अ सिंगर और उससे जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ न कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले। मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, यमा यमा जो गाना किया था, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, बाद में हम डब करेंगे। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूं, तो प्लीज ये हां जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे के वैसे गाना रह गया।
0: तो चलिए इन दोनों लेजेंड्स को याद कर लेते हैं ये गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारू के साथ only on मिर्ची.

0: बहुत हैरत की बात है कि आरडी बर्मन जैसे म्यूजिशियन को अपने करियर में कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन अवार्ड्स में काफी मैनिपुलेशन होता था या बायस भी होता था, और इन सब चक्करों में आरडी बर्मन काफी सीधे साधे भोले भाले रह जाते थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जाता था कि ये मॉडर्न म्यूजिक वाले गाने ज्यादा बनाते हैं, क्लासिकल वाले नहीं। पर ये बंदा तो मस्त मलंग था, मनकी करता था। इस बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था।
1: मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं और मालकोस में ये कोशिश की, ऐसा तो हम कहते नहीं। हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है।
0: राग भ्रष्ट हो जाता है कितने क्यूट है यार। एक बार सुनिए अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलने के बारे में एक बार क्या कहा था इन्होंने।
2: और माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ।
0: वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो जुबान बोलते थे वो सबको समझ में आती थी, प्यार और संगीत की। पुरानी जीन्स पर आज आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली

0: ये जोड़ी जैसी जमी थी ना, ऐसी जोड़ी कोई जम नहीं सकती है फिर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंडरी जोड़ी ऑफ आरडी बर्मन एंड आशा भोसले जी। आशा भोसले जी के एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था कि आरडी उनके लिए क्या थे।
1: एक तो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड। उसकी एक छोटी सी बात बोलती, उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था। तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगा, ऐसे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगा। लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे, सिगरेट जला के रखेगा वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा। लेकिन सोच में इतना मूडी था। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन ये गाना कैसे है, ये सुन ये साउथ अमेरिकन म्यूजिक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अभी ये सिंगर, और इसमें हम पूरी रात इसके निकल जाती थी। तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से लगाना फिर से लगाना।
0: तो फिर से लगा देते हैं ये आइकॉनिक गाना आशा भोसले आर डी बर्मन की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, कारवां फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

देखो देखो वो आ गया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आर डी वर्मन 1961 से फिल्मों में इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हिस्से में आया 1966 में विद तीसरी मंजिल का म्यूजिक। क्या ही आइकॉनिक ट्रेंड सेटर, फिनोमिनल म्यूजिक है वो। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको इस फिल्म के म्यूजिक का ऑफर मिला और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई।
1: एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जी का नाम है, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए आपका कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो। उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे। गया जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था ट्यून सुनाया, ऐसा कुछ किया तो उनको बहुत पसंद आया। क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब, कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं। उसके बाद पता लगा कि शम्मी कपूर हीरो हो गया। अब शम्मी कपूर हीरो हो गया तो शम्मी कपूर का तो पूरा किंग था ना, शंकर जी थे, जयकिशन जी थे, सब थे, तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया। नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शम्मी कपूर को सुनाना पड़ेगा। तो शम्मी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सेटिंग में, आए बोले आए पंजाब सुनाओ। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, जुलपानी हुई नू तारा, इतना सुनाया तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया।
0: शम्मी कपूर क्या पूरी दुनिया वाइब कर रही थी इस फिल्म के म्यूजिक के साथ और करती है आज तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आर डी बर्मन स्पेशल।

0: होता है।
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
2: मिर्ची
3: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
4: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
4: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
4: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
3: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
4: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
3: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
4: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
4: से मुझे
3: बिल्कुल,
4: से,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जा कहाँ रहा है?
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
4: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
3: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
4: यार क्या बात कर रहा
3: है,
4: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसमें? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
4: चल
3: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
4: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
4: हेलो
3: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
4: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ।

0: हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यूनिक म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस यूनिक म्यूजिक कंपोजर की फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्म मेकर्स के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन थी। एक तो नासिर हुसैन साहब, जिनके साथ तीसरी मंजिल से इनके सफलता की शुरुआत हुई। ये दूसरे कौन थे, इनके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने क्या शेयर किया था।
1: ग्रुप देखो, एक नासिर साहब के साथ तब से मेरा जम जोड़ हो गया। एक मुझे और एक फकर है कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, काफी लोगों के साथ उनके ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ। रमेश बहन, दैट्स अ रिकॉर्ड, ये मेरी लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है।
0: द ट्रेन फिल्म का जिक्र इन्होंने किया। द ट्रेन वही फिल्म है जिसके सुपरहिट गाने का कवर वर्जन बना बना के पब्लिक हटती नहीं है, थकती नहीं है, इतना सुपर फिनोमिनल गाना है वो। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ।

0: आरडी बर्मन ना म्यूजिक के लिए ऐसे भूखे प्यासे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए नए नए तरीके सीखते रहते थे। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंसिडेंट शेयर किया था जब म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब उनके घर आए थे।
1: तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया। ये उन्होंने कहा दादा आपको शायद मालूम नहीं एक बात सीक्रेट, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम, उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली, मीटर मतलब छंद, तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया। क्यों रोशन जी ने

बोले कि दादा आपका ये इतना प्यारा गाना था, देखिए हमने बना ली। ये सब क्या स्कूलिंग है, तब से हमने क्या किया, कोई गाना हिट गाना हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते। मिसाल के तौर पर यही गाना देखो, ठंडी हवा का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम, मैं दूसरा बोल से गाता हूँ। देखो

0: छंद सेम है, सब कुछ वही है, इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते।
1: सागर फिल्म, ये पूरी एल्बम ही क्या एल्बम थी भाई, एक एक गाना इसका नगीना। और ये वाला जो हम सुनने वाले हैं ना, ये तो उफ तौबा, ये कोई ऐसा प्यार में पड़ा इंसान नहीं होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: दो जीनियस लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसी सिचुएशन में कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है। एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने शेयर किया था कि किन के साथ काम करते करते अक्सर वो काफी अटक जाते थे।
1: एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आंधी, आंधी में जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया। तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगे यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसा उसका मीटर अलग होता है, एकदम मिलता ही नहीं। तो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया। फिर जब ट्यून किया, मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। अब वो फंसता है, अब वो घर चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखना पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, नहीं तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते, करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कुछ बना के दिया इन दोनों जीनियस बंदों ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इनके कॉम्बिनेशन का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं, आंधी फिल्म से। दो और जीनियस लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली

0: बाकी के म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और पंचम ऑब्जेक्ट्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप आरडी बर्मन स्पेशल ऑन पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ऑब्जेक्ट्स लाइक दो ग्लास खड़का दिए, टेबल उठा के बजा दिए, सैंड पेपर से आवाज निकाल ली। इनकी वैरायटी और रेंज इतनी वास्ट थी, इसका कोई और छोर ही नहीं था। मतलब एक तरफ ये बंदा कैबरे सॉन्ग्स बना रहा है, दूसरी तरफ अमर प्रेम जैसी एल्बम। सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक बार आरडी बर्मन ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: अमर प्रेम को तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलके मिलजुल के काम किया, उसमें पिताजी ने भी काम किया। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुना दूं। बैला बोई जा, अभी बोल बंगाली में, बैला बोई जा मतलब वक्त गुजरता जाए। बैला बोई जा,
0: रैना बीती जाए, क्या ही खूबसूरत गाना है। सारे गाने इस फिल्म के इतने सुंदर हैं यार। और अभी हम इस फिल्म का वो गाना सुनेंगे जिसको सुन के अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसको सुन के हम सोचते हैं छोड़ो ये ना सोचो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि अभी अगर आप खाली बैठे।
5: हो सकता है, हो सकता है,
3: नहीं तो
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है। कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार? तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
3: है,
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप के वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना। मैंने नहीं, तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

ना हाथ, ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ये तो आपको पता है ना कि आरडी बर्मन अपनी टीनेज से ही अपने फादर एसडी बर्मन साहब को म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड बकायदा कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट भी दिया गया है। चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, तीन देवियाँ। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए इन्होंने अपने फादर के बारे में क्या किस्सा शेयर किया था।
1: पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। मतलब एक दिन वो आए वापस, आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचम आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, तारीफ कर रहे कुछ क्या। हमें नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। हर रोज मैं सुबह जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि ये देखो एसडी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता हूँ मेरा फैन है। आज कमाल हो गया, हमने क्या, हमने आज बोलने लगा ये देखो आरडी बर्मन का बाप जा रहा है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक कमाल का मोमेंट।
0: भाई मम्मियाँ तो अक्सर बच्चों की तारीफों में पुल बांध देती हैं, लेकिन पापा से तारीफ मिलना वाकई लाइफ का प्रेशियस मोमेंट है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल में ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारू के साथ।

0: आपको पता है आरडी बर्मन का पहले बचपन का निक नेम टुबलू रखा गया था, टुबलू। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर उनका नाम पंचम कैसे पड़ा, इस कहानी के ऐसे बहुत सारे वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि अशोक कुमार दादा मुनि जी ने नोटिस किया कि आरडी जब छोटे से बेबी थे तो ऐसे प प प प की साउंड बहुत निकालते थे, तो इनका नाम पंचम पड़ गया। वैसे एक बात तो है कि आरडी जब तक जिंदा थे ना, मन से बच्चे ही थे। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बात की थी।
1: बच्चों की तरह महसूस कर लेना एक बहुत कमाल की खूबी है, और इन्होंने बच्चों के गाने जो दिए हैं, जैसे फिल्म थी मासूम जिसमें लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, इस तरह के गाने वो जब तक बच्चे की तरह आदमी महसूस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाना कंपोज कर सकता है। परिचय में सारे के सारे गांवों को लेकर गाते चले, किताब का गाना आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, जब तक आदमी वो लड़कपन या वो स्कूल बॉयश मिजाज या टेम्परमेंट वो ना हो आदमी में, तब तक ये इस तरह के गाने कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम है।
0: मुश्किल से कामों को बड़ा आसान सा बना लेते थे पंचम अपनी मासूमियत से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: भाई हम एज एन ऑडियंस बड़े हिपोक्रेट हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमेशा हम ये गाना गाते रहते हैं ना कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अब अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे लोग, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे। बट ऐसी अगर कोई फिल्म एक्चुअल में थिएटर में आती भी है ना तो मेरे और आपके जैसे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं यार। एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच प्रूव कि भाई ये बात हमारे बारे में बिल्कुल सच है। अब देखिए, कुछ टाइम पहले वरुण धवन की मूवी आई थी है जवानी तो इश्क होना है, व्हिच हैपेंड टू बी डेविड धवन की लास्ट डायरेक्टोरियल एज वेल। अब मेरे हिसाब से भाई उस फिल्म की स्टोरी लाइन वॉज कम्प्लीटली सेंसलेस, जो जोक्स थे वो एकदम आउटडेटेड थे और मैंने देखा कि लोग उस मूवी को थिएटर में चेरिश कर रहे हैं। बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी इम्तियाज अली की भी फिल्म आई मैं वापस आऊंगा और इस मूवी को थिएटर में जिस लेवल का प्यार मिलना चाहिए था शुरुआत से ही उतना मिला नहीं। ये बात और है कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अब ये फिल्म थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है एंड ऑल इन ऑल इसने 30 करोड़ से ज्यादा की

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा है मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तेरा यार हूँ मैं, नहीं उस गाने की बात नहीं कर रही, बट इसी नाम से एक मूवी आ रही है जिसके साथ ही डायरेक्टर इंद्र कुमार के साहबजादे अमन इंद्र कुमार आकांक्षा शर्मा के ऑपोजिट अपना हिंदी फिल्म डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है, विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ आइज, बट मेरे हिसाब से तो यार मेरी नजर नहीं हट पा रही क्योंकि अमन इंद्र कुमार का चेहरा मुझे थोड़ा एनीवेयर विल नॉट गेट देयर। बट एक्चुअली इस गाने की अगर बात करें तो इसमें सचेत टंडन एंड पायल देव की आवाज है, कुणाल वर्मा के लिरिक्स हैं एंड इसे कंपोज किया है पायल देव के साथ साथ आदित्य देव ने। एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 24th ऑफ जुलाई, जो एक्सप्लोर करने वाली है थीम्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। लेट्स टेक अ मोमेंट फॉर मिर्जापुर द मूवी का टीजर। भाई साहब क्या ही धमाल बवाल कमाल का टीजर है, और जब इस छोटे से टीजर ने आपके अंदर के सारे इमोशंस को एकदम से उथल पुथल कर दिया है तो सोचिए फिल्म क्या ही कमाल करेगी जो रिलीज हो रही है ऑन द 4th of September। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। रजनीकांत की अपकमिंग हाईली अवेटेड फिल्म जेलर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार एंड उन्होंने ऋतिक के इस कैरेक्टर को काफी लार्जर देन लाइफ रखा है, जिसकी शूटिंग ऋतिक ने रजनीकांत के साथ कंप्लीट भी कर ली है। बाकी की डेट्स मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली हर रोज की भांति आज भी मैं आपके अंदर के फिल्मची को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, एंड देन मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: हाय श्रुति, मैं आरुल बात कर रहा हूँ।
0: हाय आरुल, कैसे हो आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बिल्कुल बढ़िया,
3: मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ।
0: क्या बात, पूछने के पहले ही। चलिए फिर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं। मेरा पहला सवाल है, रीसेंट हिंदी फिल्म वो कौन सी है जिसमें धर्मेंद्र पाजी और शबाना आजमी के बीच चुंबन है?
3: रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
0: बहुत ध्यान से देखे हैं आप। एनीवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी की दादी कौन है?
3: जया बच्चन।
0: जया बच्चन की फिल्म जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है, वो बस लालटेन जलाती दिखती हैं सफेद साड़ी में।
3: सफेद साड़ी में लालटेन जलाती दिखती हैं।
0: हाँ जी,
3: शोले।
0: क्या बात है, शोले में धन्नो किसकी घोड़ी है?
3: हेमा मालिनी।

0: पालनी अपने बच्चों के घर बारी बारी से किस फिल्म में जाती हैं?
1: बागबान।
0: क्या बात है, बागबान में टाइपराइटर कौन चलाता है?
1: बच्चन साहब।
0: अमिताभ बच्चन। अश्वत्थामा किस फिल्म में बने हैं?
1: कल्की।
0: कल्की में कल्की की मम्मी कौन है?
1: दीपिका।
0: दीपिका पाडुकोण की फिल्म जिसमें वो अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं।
1: मैरिटल अफेयर।
0: अटक गए तो अटक गए हैं, आरुल अटक गए हैं। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ तक इतना मस्त जो गेम खेला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर बनता है।
2: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बस इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आओ साथ मिलके ढूंढते हैं आपके अंदर के फिल्मची को। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, एंड अगर आप मुझे रोज सुनते हैं देन यू नो इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्म जी। एंड द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना होता है अपना नंबर, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो उसके बाद देयर कम्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो मुझे बहुत सारे लोग अपना नंबर भेजते हैं। आज मैंने कॉल किया है रायपुर छत्तीसगढ़ के हर्ष जी को। तो सर तैयार है आप?
3: ओके लेट्स गो।
0: दैट्स द स्पिरिट। ओके, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट किसको कहते हैं?
3: मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बने थे,
3: थ्री इडियट्स
0: में फोटोग्राफी का पैशन किस हीरो को होता है? ग्रेट। आर माधवन किस फिल्म में इंटेलिजेंस ऑफिसर बने हैं?
3: धुरंधर।
0: क्या वाह, धुरंधर में जस्सी का रोल किसने प्ले किया है?
3: हीरो है अपने रणवीर सिंह।
0: ग्रेट। रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें प्रियंका चोपड़ा उनकी बहन बनी थी
3: दिल धड़कने दो।
0: ऑसम। दिल धड़कने दो का कौन सा एक्टर वेलकम मूवी में भी है?
3: अनिल कपूर।
0: ग्रेट। अनिल कपूर किस फिल्म में घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं?
3: मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया की कौन सी एक्ट्रेस फिल्म मॉम के लीड रोल में है?
3: श्रीदेवी।
0: ऑसम। श्रीदेवी की किस बेटी का डेब्यू फिल्म धड़क है?
3: जानवी कपूर।
0: ग्रेट। जानवी कपूर किस फिल्म में एयरफोर्स पायलट बनी है?
3: I guess ये वाला मुझे पता नहीं है।
0: Never mind, but it was lovely having this conversation and playing the game. तो काफी प्रो लग रहे हैं मिर्ची फिल्म जी, आपको ये टैग मिलना चाहिए आई एम श्योर।
3: I would be happy अगर आप दे दें
0: तो चलिए आपको खुश कर ही देते हैं।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आपको कंटिन्यू करना है देन MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए, मेरे DM में अपना नंबर भेजिए एंड बाकी का मैं संभाल लूंगी। अभी तो आगे आने वाले अच्छे गाने एंजॉय करते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bence bolle bana var yine izgi var ye. Madam, taziz kime var ya kime. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
5: इट्स पटाक।
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बॉक्स ऑफिस पे बुरा परफॉर्मेंस डजंट मीन कि फिल्म भी बुरी थी।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों ने इस बात को प्रूव किया है। बाबू मोशाय, हेलो जी, हाय। आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इंडियन कल्ट क्लासिक्स की बात करूंगी जो रिलीज के वक्त तो फ्लॉप रही बट लेटर ऑन उनको कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया। लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म जाने भी दो यारों के बारे में, देन वील टॉक अबाउट कागज के फूल, उसके बाद मेरा नाम जोकर, नंबर चार पे अक्टूबर एंड नंबर पांच पे ओए लकी लकी ओए। सो सबसे पहले तो कल्ट क्लासिक किन फिल्मों को बोला जाता है? वो फिल्में जिनके पास शार्प डायलॉग्स हो, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स ऐसी हो जो डेकेड्स के बाद भी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर कर सकें, और थीम्स ऐसे हो जो रिलीज के कई सालों बाद तक भी रेलिवेंट हो। इन शॉर्ट, अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो लेट्स बिगिन विद फिल्म जाने भी दो यारों। 1983 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, जिसको कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया, और मूवी में नसीरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। सो बेसिकली ये फिल्म 8 लाख के बजट पे बनी थी, और जब ये रिलीज हुई तो सिर्फ 4 थिएटर्स में ही आई थी। इनफैक्ट ऑडियंस ने बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि फिल्म का सटायरिकल अप्रोच जो था पॉलिटिकल थीम्स के साथ वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। बट इन सारे चीजों के बावजूद कुंदन शाह को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए इन द ईयर 1984 फॉर द सेम फिल्म। एंड 4 डेकेड्स के बाद आज जाने भी दो यारों इज कंसिडर्ड एज अ कल्ट क्लासिक। फिल्म नहीं देखी तो मौका निकाल के जरूर देखिएगा, एंड थैंक मी लेटर फॉर दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कहानियां ऐसी जो सालों बाद भी रेलिवेंट हो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो टाइम एंड अगेन वहां से हमें ऐसी फिल्में मिली हैं जो आज से 10-20 साल बाद भी आप देखेंगे तो टॉपिक काफी रेलिवेंट लगेगा। और आज वैसी ही कुछ कल्ट क्लासिक्स की बात कर रही हूँ अपने पांच का पंच की लिस्ट में, जिसमें सबसे पहले हमने जाने भी दो यारों को डिस्कस कर लिया। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कागज के फूल। ये फिल्म आई थी इंडिया 1959, डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त, जो एक फिल्म डायरेक्टर के राइज एंड फॉल को एक्सप्लोर करती है विद इन द इंडस्ट्री। ऑल्दो ये मूवी रिलीज के टाइम एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जो है वो लोगों को काफी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड लगा था। इनफैक्ट फिल्म की परफॉर्मेंस से इनिशियली गुरुदत्त इस तरीके से परेशान हुए थे दैट उन्होंने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वो कभी भी डायरेक्शन नहीं करेंगे। बट आज देखिए, इस फिल्म के इनोवेटिव टेक्निक्स एंड प्रोफाउंड थीम्स इस

हुई थी 4 घंटे 15 मिनट के रन टाइम के साथ विद 2 इंटरमिशंस। हाँ, और जब ये आई तो फिर राज कपूर स्टूडियोज डेप में चले गए क्योंकि इट हैपन टू बी अ डिजास्टर। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी 1988 में राज कपूर साहब के डेथ के बाद ये फिल्म एक बार फिर से रिलीज की गई विच हैपन टू बी एन इंस्टेंट हिट। तो बाबू मोशाय, बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म की डेस्टिनी कभी डिसाइड नहीं करती। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तेरा यार हूँ मैं, नहीं उस गाने की बात नहीं कर रही, बड़े सी नाम से एक मूवी आ रही है जिसके साथ ही डायरेक्टर इंद्र कुमार के साहबजादे अमन इंद्र कुमार आकांक्षा शर्मा के ऑपोजिट अपना हिंदी फिल्म डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ आइज, बट मेरे हिसाब से तो यार मेरी नजर नहीं हट पा रही क्योंकि अमन इंद्र कुमार का चेहरा मुझे थोड़ा एनीवे विल नॉट गेट देयर। बट एक्चुअली इस गाने की अगर बात करें तो इसमें सचेत टंडन एंड पायल देव की आवाज है, कुणाल वर्मा के लिरिक्स हैं एंड इसे कंपोज किया है पायल देव के साथ साथ आदित्य देव ने। एंड द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 24th ऑफ जुलाई, जो एक्सप्लोर करने वाली है थीम्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। लेट्स टेक अ मोमेंट फॉर मिर्जापुर द मूवी का टीजर। भाई साहब क्या ही धमाल बवाल कमाल का टीजर है, और जब इस छोटे से टीजर ने आपके अंदर के सारे इमोशंस को एकदम से उथल पुथल कर दिया है तो सोचिए फिल्म क्या ही कमाल करेगी जो रिलीज हो रही है ऑन द 4th of September। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। रजनीकांत की अपकमिंग हाईली अवेटेड फिल्म जेलर 2 की बात कर लेते हैं जिसमें ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार एंड उन्होंने ऋतिक के इस कैरेक्टर को काफी लार्जर देन लाइफ रखा है, जिसकी शूटिंग ऋतिक ने रजनीकांत के साथ कंप्लीट भी कर ली है। बाकी की डेट्स मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है, क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La vieta la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात,
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो देख, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था
2: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना,
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे यार
3: बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल अबे जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे एल्बम की यार जिसके हर एक गाने ने ना दिल को छू लिया था। जी हाँ, मतलब कभी कोई पल ऐसा आता है जहां वक्त रुक सा जाता है और बस दिल की धड़कने चल रही होती है। मेट्रो इन दिनों का इन दिनों टाइटल ट्रैक वही गाना है जो यार टर्न पाइक या गार्डन स्टेट पार्कवे के ट्रैफिक में भी ना सुकून दिला दे। तो इस गाने की तैयारी के लिए प्रीतम ने सोहम से बस इतना कहा था कि ऐसा गाना कि लगे कि सूरज की रोशनी ना पर्दों के बीच में से आ रही हो। और आपको पता है ये जो गाना है इसका जो इंट्रो गिटार रिफ है मुंबई के एक बालकनी पे मॉनसून के दौरान रिकॉर्ड हुआ था ताकि रेन की ना थोड़ी नेचुरल सी साउंड आए और एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस बने, और शायद इसीलिए ये गाना इतना एयरी और सूना सूना सा लगता है। वैसे आपके इन दिनों में वो कौन सा मोमेंट है जब जिंदगी थोड़ी रुक सी गई है ऐसा लगता है? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस पल को थोड़ा रोक लेते हैं विद द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिनों फ्रॉम मेट्रो इन दिनों राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: यहाँ की लड़की

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारत नाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

Sham Shanda. Let's go not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ बातें होती है ना जो जुबान तक आते आते रुक सी जाती है, पर दिल उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता। इन दिनों मेट्रो का बातें कुछ अनकही सी एक ऐसा ही गाना है। ये वो गाना है जहाँ हर नोट ऐसे गिरता है ना कि जैसे लगता है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो। और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है, मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग। और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो। और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना दे। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं। टेल मी ऑन Instagram मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba na sakaba na. Burka, burka. La vipa la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
3: ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी होगी आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: रेडियो
4: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस बिल्कुल छोटी छोटी जीतों में छुपे होते हैं। जी हाँ, मतलब शाम के इस वक्त में जब न्यूजर्सी की ट्रेन एकदम स्लो हो जाती है और लोग घर की तरफ बढ़ उठते हैं, कर सलाम इन दिनों मेट्रो का एक परफेक्ट रिमाइंडर लगता है कि लाइफ जितनी भी भाग दौड़ वाली हो उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज का सलाम जरूर बनता है। और इस गाने की मेलेडी एक कैजुअल जैम से निकली थी, मतलब म्यूजिशियंस ने ना टिन क्रेट्स और एम्प्टी कैन से बीट से एक पूरे सिटी हार्टबीट की वाइब क्रिएट की थी। और इसीलिए जब भी ये गाना बजता है ना, लगता है कि यार शहर खुद आपको सलाम कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आज की आपकी वो छोटी सी जीत क्या थी, एक ट्रैफिक लाइट का पेशेंस या एक बॉस को दिया हुआ सही जवाब। कुछ भी हो, सेंड मी योर सलाम मोमेंट ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए न्यू जर्सी के स्पिरिट को सलाम करते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम अलग सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार, लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल टूटने का दर्द कम तो नहीं करते, बस उस दर्द को ना थोड़ी नजाकत से पकड़ लेते हैं। ओ मेरी जान की आवाज में मेट्रो का एक ऐसा ही गाना था जिसमें हल्की सी वॉर्म्थ भी है, हल्का सा दर्द भी है और एक सुकून है जो यार शाम को ना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो बिल्कुल भी शांत रखा गया था। मतलब वैसे तो यार प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो जनरली शांति होता है, लेकिन ये स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा खास था। नो एक्स्ट्रा लाइट्स, नो बिग सेटअप, बस के हेडफोन्स और एक इमोशनल सा साइलेंस। तभी तो यार शायद इस गाने में एक ऐसी स्टिलनेस है जिससे ना हार्ट ब्रेक भी खूबसूरत सा लगता है। तो अगर इस गाने को आपने दिल से महसूस किया है के की आवाज़ में, तो आज की शाम में, न्यू जर्सी की इस खूबसूरत शाम में, ये ट्रैक प्ले करते हैं आपके उस खास मेरी जान के लिए। तो चलिए वैसे आप भी बता सकते हो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो। टेल मी ऑन इंस्टा @mirchisiddhi. और ऐसा कौन सा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके लिए खूबसूरत है। फिलहाल तो सुनते हैं के की आवाज़ में ओ मेरी जान, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Yambala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Milchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
4: अच्छा तो दुबई जाना है.
3: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने सही कह रहे.
4: हाँ देश मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
3: नहीं बोलना.
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है
4: आपसे. मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
3: सॉरी.
4: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
3: ओके.
4: आई लव यू.
3: आई लव यू टू.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: इट्स हॉट.

दोस्तों, घर में जब भी वेडिंग एल्बम निकलती है ना, पूरी फैमिली एकदम से फिल्म क्रिटिक्स जैसे बन जाती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, साथ में वेडिंग एल्बम देखने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। लगता है जैसे ही कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहे हो, क्योंकि कोई हेयर स्टाइल पर कमेंट कर रहा होता है, कोई फैशन पर, कोई डांस परफॉर्मेंसेस पर, और कोई बस ये कह रहा होता है कि अरे वाह, कितने यंग लग रहे थे हम। और इसी हंसी मजाक के बीच में एक बात समझ आती है कि वक्त कितना भी बदल जाए, फैमिली के साथ जुड़ी यादें हमेशा स्पेशल रहती है। बस उन्हें सेलिब्रेट करने के ना नए रीजंस मिलते ही रहते हैं। और जब भी कोई ऐसा खास सेलिब्रेशन हो, तो ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि कुछ चीजों को भी ना एक नई कहानी मिलनी चाहिए। और शायद यही सोच तनिष्क के साथ पूरी हो सकती है, बिकॉज तनिष्क ब्रिंग्स फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, वेर यू कैन ब्रिंग एनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी अबाउट 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर, एंड तनिष्क विल टेक इट फॉर फुल वैल्यू विद 0 डिडक्शन। Also, you can get an additional $5 per gram on exchange gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Aur dosto, ye bhi bataiye ki jab aapke ghar mein wedding album khulta hai, to wo kaun sa gana hai jo aapko seedha us din par leke jata hai? Tell me honest at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur shaadiyon ko celebrate karne ka ye agla gana right here on Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर शहर के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो यार खास बन जाते हैं, लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते।

0: बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लानिंग, बस दोस्ती और म्यूजिक की वॉर्म्थ। तो शाम के वक्त जब न्यूजर्सी में अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, तो बस गिटार या कोई भी एक टिन के डब्बे के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जब दिल से निकलता है तो वही गाना होता है यार, लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते। और इस गाने ने ना कुछ ऐसी ही फील दी है, मतलब ऐसा गाना है जो अक्सर हम सोचेंगे कि यार दोस्तों के साथ ही गाना चाहिए। तो बस आज लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते, ये गाना रिक्वेस्टेड है बाय आदित्य मदान, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में, अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, लाइफ इन अ मेट्रो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए खास है, मुझे ज़रूर बताना, वो बजाऊंगी मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो वो भी ज़रूर बताना। फिलहाल बजाते हैं आदित्य की रिक्वेस्ट पर रिश्ते फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो। कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूद कर रहा हो। गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो। कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे। तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। तो दोस्तों आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, केके की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है। इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नज़रों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन्स से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की ज़रूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज़ दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊँगा राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virgola la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे यार
3: बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल जा, चल
4: काम कर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना की थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची It's hot.

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पे बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो

वीकेंड ऑफिशियली ऑन और आज रात का सीन सिंपल है बॉस। एसी कम, डांस फ्लोर ज्यादा, क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड के साथ फुल वॉल्यूम, फुल सेलिब्रेशन, साथ में मिर्ची ओयोंतिका और वर्ल्ड कप फीवर भी बैकग्राउंड में चालू है, ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है, गोल हो या ग्रूव, आज रात सब अलाउड है। चलो गर्मी बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन क्लब मिर्ची।